आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।

0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। वंदन वार,
3: विविध भारती।

आज का सुविचार हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। मुस्कुरा कर उठिए क्योंकि खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत।

निजी श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर और शाम को पुनः 6:35 पर आप जी माफ कीजिएगा 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान, जिसका भाग 193 प्रसारित होगा। 6:45 पर संगीत सरिता, जिसका पुनः प्रसारण शाम को 6:45 पर आप सुनते हैं, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं एसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा, इसका भाग 8 आप सुनेंगे। सुबह 7 आप सुनते हैं पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम 7:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा।

सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, प्रोटीन और विटामिन का महत्व इस विषय पर डॉक्टर मीनल शाह से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति रामकरण मीणा। प्रसारण का समय सुबह 10 बजे। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे। 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी। अपराध बोध से बचना जरूरी, मुहावरों की दुनिया आंखों का तारा होना, उद्यमी महिला कल्पना सरोज की बातें होंगी। बातें हल्की फुल्की, परीक्षा परिणाम पर कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे ये आप सुनेंगे। पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की है। शाम 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:30 पर झरोखा। 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका प्रेम दीवाना। लेखन ब्रजभूषण का है, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का। 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का भाग 193।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आ गाते।

0: इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जानी मानी गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज सुरों की वर्षा हो रही है। हमारे साथ हैं अनूप जलोटा जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद।
1: भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी, और हम आज उनसे जानना चाहते हैं कि उनके तमाम भजन लोग पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें किन गायकों के गाए भजन पसंद आते हैं, और उन गायकों के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, उनके गाए भजन गा के हमें सुनाएं।
2: भजन सबने गाए हैं, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसने भजन न गाए हो। और अब तो ये भी सिद्ध हो गया कि जो भजन है वो शास्त्रीय गायन का एक अंग है, क्योंकि जितने भी शास्त्रीय गायक हैं वो बंदिश गाने के बाद में आखिर में भजन जरूर गाते हैं, चाहे वो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हो, चाहे डीवी पलुस्कर जी हो, चाहे पंडित जसराज जी हो, या भीमसेन जोशी जी हो, या किशोरी आमोनकर जी हो, सब भजन गाते हैं। गजल कोई नहीं गाता अपने प्रोग्राम के एंड में। इसका मतलब गजल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक का अंग नहीं है, लेकिन भजन है, नहीं तो कोई ना गाता, लेकिन सभी गाते हैं। तो भजन डीवी पलुस्कर जी ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो आज तक लोग गा रहे हैं।

0: भीमसेन जोशी जी, उनके भजन गांव गांव में गाए जाते हैं
1: जी।
0: लोग अपने कार्यक्रम को उनके भजन से ही समापन करना पसंद करते हैं।

ऐसे कोई गायक है ही नहीं जिन्होंने भजन अंग को न छुआ। इतने प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह साहब जिन्होंने गजलों को अमर कर दिया, उन्होंने जब भजन गाए

0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बस आंखें बंद करके सुनते रहें और अनूप जलोटा जी हमें भजन सुनाते रहें, बस ऐसे ही लग रहा है। एक सवाल मेरे जहन में आया जब मैं ध्यान से सुन रही थी। नई पीढ़ी एक अलग तरह के संगीत और संस्कृति में गुम है, ऐसा क्या किया जाए? अनूप जी आप बताएं कि भजन की ओर उनका रुझान हो, उन्मुख हो।
1: बस ऐसे भजन गाए जाए, ऐसी लागी लगन जैसे।
0: क्या बात है।
1: हे राम जैसे, शाम तेरी बंसी जैसे, तो यंग जनरेशन सुनने लगेगी। लेकिन बहुत मुश्किल गाएंगे तो नहीं सुनेंगे लोग। तो कोशिश यही की जाए कि सरलता

0: राम नाम अति मीठा है। अनूप जी, आपके गायकी के माध्यम से हमारे श्रोता अपनी आंखों से देख रहे हैं ये चित्र, आपके शब्द चित्र के जरिए। और अब वही घड़ी आ गई है जब हम समापन करते हैं, तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं ये कड़ी। कल फिर मिलेंगे संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ। सबको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारायणिया, आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, मन में नाचे मन की उमंगे। बेकसूर फिल्म से ये गीत है, आवाज लता मंगेशकर की है, एहसान रिजवी के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

आपने गीत सुना। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं नदिया की पार फिल्म से। गीतकार हैं मोती, संगीतकार सी रामचंद्र, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की। सुनिए ये गीत।

0: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में आपने सुना नदिया के पार फिल्म का ये गीत। लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम का गाया गीत। शकील बदायूनी के बोल है, तर्ज बनाई है नौशाद अली ने। फिल्म का नाम मेला।

मेला फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आपने सुना। अब सुनिए कमल के फूल फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, श्याम सुंदर का संगीत, और इस गीत को गाया है सुरैया ने।

कमल की फूल फिल्म से सुरैया की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं सरगम फिल्म का गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर और चितलकर ने। पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है श्री रामचंद्र ने।

0: सरगम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में पीएल संतोषी का लिखा गीत था और सी रामचंद्र का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उमा देवी की आवाज में अनोखी अदा इस फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है शकील मदायूनी ने और संगीतकार है नौशाद अली।

ये गीत था उमा देवी की आवाज में अनोखी अदा फिल्म से। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आग से शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये गीत। इस गीत को लिखा है बहजाद लखनवी ने और संगीतबद्ध किया है राम गांगुली ने।

बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया। गोरे गोरे पांव में झांझन, गोरे गोरे पांव में झांझन, चाल करे बदनाम, ओए होए चाल करे बदनाम, हाय हाय चाल करे।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आग से शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। अब आपको सुनवा रहे हैं बाबुल फिल्म का गीत। इसे गाया है शमशाद बेगम ने, शकील बदायूनी के बोल हैं, संगीतकार नौशाद अली।

बाबुल फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया था नौशाद अली ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओं आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम हम है राही प्यार किए में। आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में। एमजी हशमत ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

0: तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आपने गीत सुना। अब आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए आपको अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गुलजार का लिखा गीत आर डी बर्मन का संगीत बत किया आंधी फिल्म से।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस तो लंबी थी ना।

आंधी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया गीत फिल्म किनारा से गुलजार की भूल, संगीत आजी बर्मन का।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम ही राही प्यार की इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना अंतराल, और अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत अदालत फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम हम हैं राही प्यार की। आइए अब आपको सुनवाते हैं वारंट फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल, आरजी बर्मन का संगीत।

0: फिल्म वारंट से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

हम ही राही प्यार किए की आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में एमजी हशमत का लिखा गीत है, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम उलझन।

उलझन फिल्म से किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यही संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सवेरे की 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया।

0: तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम

0: चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
1: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा। रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजी

0: मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं शान और श्रेया घोषाल की आवाजों से। फिल्म का नाम जय हो। इस गीत के बोल लिखे हैं

फिल्म संगीत की अगली पेशकश हीरोपंती इस फिल्म से, आवाज मोहित चौहान की। धुन साजिद वाजिद की है और बोल है कौशिर मुनीर के।

फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश सिंग इज किंग इस फिल्म से आवाजें राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की। बोल है मयूरपुरी के और धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: सिंगिस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार,
1: श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार में।

0: दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो अपने जहन में ये बात हमेशा रखिए कि जो खोया है उसका गम नहीं, क्योंकि जो पाया है वो भी कुछ कम नहीं। जो नहीं है वो बस एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। खोने और पाने का गणित तो दोस्तों जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन गणित की ये पहेली तभी सही तरीके से सुलझती है जब मानव मन में संतोष का समीकरण हो। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसी गुरु मंत्र के साथ शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार। तो प्रोग्राम की शुरुआत की पहली कड़ी आज की टेक्निकल टीम से हमारा परिचय।
1: दोस्तों नमस्कार की टीम में आज हमारे साथ ट्रांसमीटर पर हैं पारसपुरी गोस्वामी और नरेंद्र सिंह राठौर। कंट्रोल रूम से साथ मिल रहा है प्रवीण कुमार का। एचपीटी कंसोल पर हमारा साथ दे रही हैं उद्घोषिका नीतू। वहीं एफएम का कंसोल संभाल रही है उद्घोषिका कविता सांखला। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजय व्यास की और संयोजन है राजेश लामरोड़ का। और इस पूरी टीम के साथ कार्यक्रम की होस्ट मैं चंद्रकला सुथार
0: और मैं लीना माथुर। तो स्वीकार कीजिए हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत गाने नए नवेले के साथ।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिक तब लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: दोस्तों जिंदगी के बीच का जिंदगी का फलसफा भी कुछ अजीब है ना। बस तकदीर और तदबीर के बीच का सारा मसला है। वो कहते हैं ना कि जो नसीब में है वो चलकर आएगा और जो नहीं है वो मुट्ठी में से रेत की तरह फिसल जाएगा। पर दोस्तों जिंदगी को इतना सीरियस लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं
1: सही
0: जाएगा।
1: बात है लीना जी। रोते रोते जिंदगी में आने से लेकर लोगों को रुलाकर यहाँ से जाने के बीच का जो सफर है उसमें हंस लो, हंसा लो, क्योंकि आँख की तो फितरत ही है आंसू बहाना।
0: क्या बात है।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गाने नए नवेले और बात चल रही है जिंदगी की। तो चलो आज थोड़ी बात करते हैं, जो छूट गया है पीछे उसी से मुलाकात करते हैं। ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, अब खोलकर गांठ उसकी उन्हें आज़ाद करते हैं। सब कुछ तो बटोर नहीं पाएंगे इन हाथों से।
1: हाँ चंद्रकला, सब कुछ नहीं बटोर पाएंगे, मगर चंद खुशियों को थामने की शुरुआत तो करते हैं। जो भी मिला है जिंदगी से, गम या खुशी, चलो उन्हीं के साथ अपनी तमन्नाओं से मुलाकात करते हैं।

0: फ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों, ये दुनिया गोल है ऐसा हम सब सुनते हैं, यानी हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है। कुछ ऐसे ही मुद्दे पर हमने भी एक बहुत सुंदर बात पढ़ी है जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। छोटी छोटी सी बात पर रिश्तों को ना तोड़े, 8 अरब की भीड़ में 8 लोगों को जोड़े। कोई भी व्यक्ति आपके पास दोस्तों 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से।
1: हाँ, अगर वो भाव से आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव से आया है तो उसकी मदद कीजिए, और अगर प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि ईश्वर ने आपको किसी को प्रभावित करने की क्षमता तो दी है। कुछ बातें जीवन को संजीदगी से जीने और सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। मसलन, कोई कितना भी बोले, आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुद्र नहीं सुखा सकती।
0: बिल्कुल, जिंदगी में हार या जीत की परवाह किए बिना रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि जीत मिले या ना मिले, सीख तो मिलेगी ही।
1: बिल्कुल,
0: और इतिहास साक्षी है इस बात का, जिसने रिस्क लेना सीखा है उसी ने इतिहास रचा है।

0: जी हाँ दोस्तों, जैसा कि चंद्रकला ने अभी कहा कि दुनिया गोल है और इस गोल दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए गोते लगाते रहते हैं और इस पूरे सफ़र में हमारे साथ होते हैं हमारे खूबसूरत रिश्ते। रिश्तों की मिठास जो होती है ना, उसको बरकरार रखने के लिए चीनी की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ शब्दों का सही चुनाव रिश्तों में मिठास बरकरार रखता है। आपकी एक प्यारी सी मुस्कान किसी का दिन खास बना सकती है। इसलिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसे बहुत ज़्यादा गौर से मत देखिए, ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई निकल जाए। लेकिन जो आपको बुरा लगता है उसे बिल्कुल गौर से देखिए, मुमकिन है कि कोई अच्छाई नज़र आ जाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ समय हो रहा है न्यूज़ ब्रेक का और हम रुक रहे हैं न्यूज़ ब्रेक के लिए और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
2: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 9 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इससे पहले श्री मोदी ने कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद निवेश में हुई बढ़ोतरी की सराहना की।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, AI, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। श्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। दो दिन की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में रुकावट के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने के बाद अब राजस्थान नमो भारत नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रस्तावित दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर नई दिल्ली के सराय कालेखां से शुरू होकर गुरुग्राम होते हुए खैरथल, अलवर, नीमराना, बहरोड और सोतानाला तक पहुंचेगा। परियोजना के तहत कुल 196 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित किया जाएगा जिसमें 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। राज्य में ये कॉरिडोर 91 किलोमीटर लंबा होगा और 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। RRTS ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी जिससे दिल्ली, NCR, राजस्थान के बीच आवागमन तेज होगा। राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह की ओर से गठित 6 सदस्यीय विशेष समिति कल कोटा पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर लूनी रिच्छा स्टेशन पर खड़े प्रभावित कोच का निरीक्षण किया और अग्निकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि ट्रेन के AC कोच में लगी आग की घटना के बाद रेल कर्मियों की तत्परता और आपातकालीन प्रबंधन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश भर में 2 दिन का मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इसके तहत कुल 810 नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर 47,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई। वहीं 274 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रेंज के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तस्करों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। समूचा राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पश्चिमी गर्म हवाओं के असर से पारे में उछाल आया है। लू के थपेड़ों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

0: झुलसाती धूप को देखते हुए लोग दिन के समय घरों से निकलने में बच रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल दो शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज हुआ, वहीं 10 स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ और पिलानी सबसे गर्म रहे। वहीं जालौर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर मापा गया। आज सरहदी जिलों और दक्षिणी पूर्वी भागों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट बताया है। इन जिलों में दिन का पारा 42 से 47 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से चिन्हित ग्राम पंचायतों में जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संतृप्ति कैंप आयोजित हो रहे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल इस संबंध में 17 विभागों की बैठक ली। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने शिविरों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उधर जनजाति जिले डिंगोरपुर में जिला कलेक्टर देशल दान ने अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
1: जिला कलेक्टर देशलदान ने सभी विभागों को दायित्व सौंपते हुए इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे। अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की ओर से 25 तरह के कार्य किए जाएंगे। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
0: राज्य सरकार ने विभिन्न खेलों के पदक विजेता युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति को मजबूती से लागू किया है। इसके तहत अब तक 186 खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। इनमें क्रिकेट, शूटिंग, घुड़सवारी और कबड्डी सहित कई खेल शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 1786 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। दोस्तों, हर साल का हर एक दिन अपने आप में एक अलग इतिहास समेटे हुए होता है। हर बीते हुए दिन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो उस दिन के इतिहास को खास बनाती है। इतिहास में घटित इन घटनाओं से हमें भविष्य के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के दिन के इतिहास पर।
3: दोस्तों, 19 मई 1521 जब उस्मानी सेना ने लड़ाई के बाद बालकन प्रायद्वीप में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्राद पर अधिकार किया था।
2: और 19 मई 1743 जब जियां पियरे क्रिस्टीन ने सेंटीग्रेड तापमान पैमाने को विकसित किया।

0: और 1910 में पृथ्वी हिली धूमकेतु की पूंछ से होकर गुजरी, जो कि इतिहास में पृथ्वी और किसी भी धूमकेतु के सबसे करीब आने की पहली घटना है।
1: और 19 मई 1936 का दिन जब ब्रिटेन के आविष्कारक रॉबर्ट डिटसन वाट ने राडार बनाया और यह प्रणाली आज के ही दिन सबसे पहले ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर स्थापित की गई।
0: मई 1950 का दिन जब मिस्र ने स्वेज नहर को इजरायली जहाजों के लिए बंद करने की घोषणा की थी।
1: मई 1971 जब भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। 19 मई 2002 का दिन था जब चार सदियों की दास्तां के बाद पूर्वी तिमोर नई सहस्त्राब्दि के पहले नए राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा। और 19 मई ही 2008 का दिन था जब भारत और चीन के बीच नाथुला से व्यापार फिर से शुरू हुआ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: चलिए दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन विशेष की बात करते हैं। आज यानी कि 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है। 19 मई 2025 को पहले विश्व निष्पक्ष खेल दिवस का उद्घाटन किया गया, जो मित्रता, एकजुटता, सहिष्णुता, समावेश और गैर भेदभाव की भावना से खेले जाने वाले खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित उत्सव है। निष्पक्ष खेल प्रतिभागियों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है, जिससे प्रतिभागियों के बीच के सांस्कृतिक मतभेद कम होते हैं और उनकी समानता को बढ़ावा मिलता है। ये दिवस युवाओं में इस भावना को सशक्त करता है कि खेल किस तरह के सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और एक मजबूत और एकजुट समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। विश्व निष्पक्ष खेल दिवस की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2024 को महासभा ने संकल्प A/RES/78/310 को अपनाया, जिसमें 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया।
1: यह खेल दोस्तों डोपिंग और हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है और साथ ही सामाजिक एकता को मजबूत करता है। इसका उद्देश्य यही है कि यह दिन मित्रता, एकजुटता, सहिष्णुता और समावेशिता की भावना से खेलों को प्रोत्साहित करता है। और इसके महत्व को देखा जाए तो यह खिलाड़ियों को नियमों का पालन करने और विरोधियों के प्रति सम्मान रखने के लिए प्रेरित करता है। इसका सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। यह दिन खेल के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने और सांस्कृतिक मतभेदों को कम करने पर जोर देता है। यह दिन केवल पेशेवर खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी स्तर पर खेल से जुड़ा है, ताकि खेल को एक सकारात्मक सामाजिक शक्ति बनाया जा सके। खेल की दुनिया में ईमानदारी सबसे बड़ा पदक है दोस्तों। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जीत से पहले खेल की भावना को प्राथमिकता देना है।
0: निष्पक्ष खेल का प्रदर्शन करके ही ओलंपिक मूल्यों और स्वयं ओलंपवाद को प्राप्त किया जा सकता है।

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निष्पक्ष खेल दिवस की एक थीम रखी गई है और वो थीम है खेल का पुल बनाना और बाधाएं तोड़ना। यह थीम खेल की उन अद्वितीय क्षमताओं पर जोर देती है जो समाजों, संस्कृतियों और पीढ़ियों के बीच संबंध, समावेश और शांति को बढ़ावा देते हैं।

0: दोस्तों आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन का हमारा सप्ताह विशेष सेगमेंट होता है आओ जाने खेल। इसी क्रम में हम हमेशा चर्चा करते हैं किसी इंडोर या आउटडोर गेम के बारे में, तो आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे तैराकी की बटरफ्लाई तरीके की। बटरफ्लाई तैराकी की सबसे ऊर्जावान चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक है। जो तैराकी के तरीके हैं उनमें बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीका है। वैसे तो स्विमिंग अपने आप में एक ऊर्जावान खेल है, लेकिन इस तरीके में जो तैराक है वो अपने हाथों और पैरों से एक सुंदर तालमेल के साथ पानी में मशक्कत करता है। थोड़ा सा आम तरीके से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तरीका है। इसमें तैराक को दोनों हाथों को पानी के ऊपर से एक साथ आगे ले जाकर पानी में प्रवेश करवाया जाता है। इसके बाद तैराक दोनों हाथों को एक साथ घुमाते हुए अर्धवृत्ताकार गति से छाती के नीचे से होते हुए हाथों को पीछे खींचता हुआ पानी को पीछे धकेलता है और अपने दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर लहरदार गति से किक मारते हुए आगे बढ़ता है और इस किक को डॉल्फिन किक कहते हैं। ये किक जो है तैराक की कूल्हों से शुरू होती है। इस डॉल्फिन किक के कारण तैराक का मूवमेंट डॉल्फिन की तरह होता है, मतलब कि पानी में जिस तरीके से डॉल्फिन फिश तैरती है उसी तरीके से तैराक चलता है। जहां तक तैराकी के दौरान उसके सांस लेने की बात है, तो जब वो हाथों को पानी से बाहर निकालकर पीछे खींचते हुए रिकवरी मोड में होता है, उसी दौरान तैराक अपने सिर को थोड़ा सा पानी से ऊपर उठाकर सामने से जल्दी से सांस ले लेता है।
1: और बटरफ्लाई में सांस लेना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। जब हाथ पीछे की ओर खींच रहे होते हैं तब ठुड्डी को पानी की सतह से थोड़ा ऊपर उठाकर सांस ली जाती है। सांस लेने के तुरंत बाद सिर को वापस पानी में डाल देना इसमें होता है और इससे पहले कि हाथ रिकवर पूरी करके पानी में वापस आए, यही सांस लेने में की इसमें तकनीक होती है। और बटरफ्लाई स्ट्रोक में महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप इसकी लहरदार गति को समझ लेते हैं तो यह तैराकी का सबसे रोमांचक अनुभव बन जाता है। भारत में बटरफ्लाई तैराकी की बात करें तो कुछ ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई है। सजन प्रकाश को भारत के बटरफ्लाई किंग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वीर धवल खाड़े भारत के सबसे अनुभवी और तेज तैराकों में से एक हैं। पैरा तैराकी की दुनिया में सुयश जाधव एक बड़ा नाम है दोस्तों। उन्होंने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर बटरफ्लाई श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। और महिला खिलाड़ी की बात करें तो आस्था चौधरी बटरफ्लाई श्रेणी में एक उभरती हुई खिलाड़ी हैं। नयना कश्यप हैं और भारत में इन खिलाड़ियों की सफलता ने नई पीढ़ी को इस कठिन स्ट्रोक को अपनाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया है।

0: का सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रसुख एक तरफ
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश
3: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा थकान नहीं लगेगी
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर
5: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने जोधपुर मोबाइल 9829027065
6: 10 लाख की लॉटरी मुझे वाओ
7: फर्जी ऑफर्स से सावधान
8: RBI कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सब घूम घट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़क पन छोड़ो।
1: दोस्तों अब कर लेते हैं एक खास बात। खास बात यह है कि आज विश्व आईबीडी दिवस है। इसका पूरा नाम इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज है और हर साल 19 मई को यह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आईबीडी के बारे में जागरूकता फैलाना और दुनिया भर में इससे प्रभावित लाखों लोगों को एक मंच पर लाना है। आईबीडी कोई एक बीमारी नहीं है बल्कि पाचन तंत्र से जुड़ी एक गंभीर समस्याओं का समूह है। आईबीडी मुख्य रूप से दो तरह की होती है दोस्तों। पहली अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, यह बड़ी आंत और मलाशय में सूजन और छाले पैदा करता है। दूसरी होती है क्रोहन डिजीज, ये पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है और सूजन आंत की गहराई तक जा सकती है। इसमें इसके मुख्य लक्षण और प्रभाव की बात की जाए तो आईबीडी के लक्षण में हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, लेकिन सामान्यतः ये लक्षण दिखाई देते हैं। क्या होते हैं वो? लगातार पेट में दर्द और मरोड़ आना, गंभीर और पुरानी दस्त लगना,

मल के साथ खून आना और अचानक वजन कम होना और थकान सी महसूस होना, भूख में कमी भी इसमें महसूस होती है और इसके प्रति जागरूकता जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आईबीडी केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि यह है व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य है और सामाजिक जीवन और काम करने की क्षमता पर भी गहरा असर डालती है। पाचन संबंधी समस्याओं पर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं।

लोग खुलकर बात नहीं करते हैं और जो यह दिन है वो इसी झिझक को दूर करने का अवसर देता है। लक्षणों को सही समय पर पहचान कर सही इलाज शुरू करने से भविष्य की जटिलताओं जैसे सर्जरी है उससे बचा जा सकता है। इसमें सही जानकारी, संतुलित जीवन शैली और चिकित्सा सहायता के साथ इस स्थिति को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जाता है। इस 19 मई को आइए हम भी अदृश्य बीमारी के बारे में जागरूक होने और दूसरों को शिक्षित करने का संकल्प लें। यही थी आज की खास बात।

नमस्कार कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम बात करते हैं आज के काम की बात के बारे में। आज की काम की बात में हम बात करेंगे पेट्स, यानी कि जो हमारे पालतू जानवर हैं उनकी देखभाल हम कैसे करें। दोस्तों, पालतू जानवर को घर में लाना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन पालतू जानवरों के साथ साथ घर में आता है जिम्मेदारियों का कारवां। हर पालतू जानवर के मालिक के लिए ये ज़रूरी है कि वो पालतू जानवरों को खुश और स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक चीज़ें मुहैया करवाए। वैसे तो हमारे सारे पालतू जानवरों की देखरेख के बेसिक नियम लगभग एक से ही होते हैं कि उनको साफ़ सफाई, खाना समय पर देना, उनके वैक्सीनेशन की ध्यान रखना, यही सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ अगर मैं सारे जानवरों की बात करने बैठूंगी तो समय का प्रबंधन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए हम बात करते हैं सिर्फ पालतू डॉगी के बारे में, यानी कि डॉगी का बच्चा यानी कि पपी के बारे में। पपी को पालतू बनाकर घर लाने के समय उसकी जो उम्र हो वो 8 से 12 हफ्ते तक की हो तो ठीक रहता है। इसका कारण ये है कि 2 से 3 महीने की उम्र में एक पपी अपनी माँ से सभी ज़रूरी आदतें सीख चुका होता है और इंसानों के साथ जुड़ने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार हो सकता है। उसको ट्रेनिंग देना आसान होता है और वो नए माहौल में जल्दी ही घुल मिल जाता है। एक बच्चा जो अपनी माँ को पूरी दुनिया मानता है, वो जब आपके परिवार में आता है और बड़ा होने लगता है तो वो आपको और आपके परिवार को ही पूरी दुनिया मान लेता है। इससे ज्यादा छोटी उम्र में पपी को माँ से अलग करने में उस पपी में डर या गुस्से की भावना पैदा हो सकती है। हालांकि बड़े उम्र के डॉगी को भी अपनाया जा सकता है, लेकिन फिर वो आपके हिसाब से ट्रेन होने में उसे थोड़ी सी मुश्किल आएगी। आप जब एक पपी को घर लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसके पोषण और खान पान का सही समय अंतराल के साथ मैनेज करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो पपी चूंकि ग्रोइंग एज में है तो उसको थोड़े थोड़े समय अंतराल के साथ थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई बार देना चाहिए। पपी के लिए ज़रूरी पोषक तत्व प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है और उसके लिए उसे चिकन, अंडा, मछली, चावल, ओट्स, सब्जियों में गाजर, कद्दू, बीन्स या बॉइल्ड पोटैटो, ये सब देना चाहिए। पीने के लिए हर बार साफ और स्वच्छ पानी दीजिए। पपी के खाने

और पानी के बर्तनों को हर बार साफ करिए, मतलब हर बार साफ किए हुए बर्तन में ही आप खाना और पानी दें। वहीं जो बड़े डॉगीज होते हैं उनको आमतौर पर दिन में दो ही बार खाना दिया जाता है। खाने और पोषण के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है वैक्सीनेशन। एक पपी का वैक्सीनेशन लगभग 6वें और 8वें हफ्ते से शुरू होता है और ये वैक्सीनेशन जो है रेबीज़, डिस्टेम्पर, पार्वो वायरस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का प्रिवेंशन है। पपी की नियमित डॉक्टरी जांच भी ज़रूरी है। सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ साथ टिप्स और पिस्सुओं के से बचाव और डीवार्मिंग भी बहुत ज़रूरी है। और अब अगर हम बात करें सबसे ज़रूरी उनके साफ सफाई की, तो उन्हें साफ रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा नहलाना जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। पपी को लगभग 2 से 3 हफ्ते में एक बार नहलाएं। हर बार डॉग शैम्पू का इस्तेमाल करें। नहलाने के बाद उनके शरीर को अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर होते हैं बाल और गीले बालों में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। उनके बालों को अच्छे से ब्रश करें, उनके कानों को साफ करें। इसके साथ साथ उन्हें उठने बैठने की और आपके सारे कमांड फॉलो करने की ट्रेनिंग दें। पपी के साथ भी प्यार से पेश आएं और प्यार से ही उन्हें ट्रेनिंग दें, क्योंकि वो आपकी भावनाएं समझते हैं। पपी के दिल में भी प्यार, डर, खुशी, जलन, उदासी, अकेलेपन की इन सब भावनाओं का उसके मन में भी एक बोलबाला रहता है। वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो पूंछ हिलाकर, उछलकर, खेलकर आपके प्रति अपना प्यार जताते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सैर। उन्हें सुबह शाम सैर पर ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही पोषण, सही माहौल, प्रॉपर केयर और आपका ढेर सारा प्यार उस पपी को आपके परिवार का सबसे चहेता साथी बना देता है, क्योंकि डॉगी जो है वो फितरत से मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त, वफादार साथी और बिना किसी शर्त के प्यार देने वाला दोस्त होता है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: और दोस्तों अब चलते चलते कार्यक्रम का वो पड़ाव आ गया है जहां हम बात करते हैं आज के दिन के जन्म दिवस की। आज भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को जयंती दिवस पर हम याद करते हैं। 19 मई 1913 में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि अनुभवी राजनेता, कवि और कुशल प्रशासक के रूप में थी। आज उनके जयंती दिवस पर हम उन्हें याद करते हैं और उन्हीं के साथ 19 मई को हम जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं टीसी योहानन को। 19 मई 1947 को जन्मे टीसी योहानन भारत के ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने भारत में लंबी कूद को एक नई दिशा प्रदान की। वर्ष 1972 में टीसी योहानन ने ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजय हासिल की और 1973 में उन्होंने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 7.78 मीटर की लंबी छलांग लगाई। टीसी योहानन को उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा के रूप में सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों बधाइयां देते हैं और उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हैं।
1: और दोस्तों बधाई देते हैं इस मंच से रस्किन बॉन्ड को। भारतीय, आज उनका भी जन्मदिन है। भारतीय साहित्य जगत के ऐसे रत्न हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं को बेहद खूबसूरती से पिरोया है। पिछले 7 दशकों में वे पाठकों, विशेषकर बच्चों और किशोरों के दिलों पर राज करते रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से आप एक हैं। उनकी प्रसिद्धि विशेष रूप से बाल साहित्य की रचना को लेकर है। उनकी कहानियों में बच्चों के सपने, उनकी इच्छाओं का जिक्र तो होता ही है, बच्चों के संघर्ष की कहानियां भी होती है। और इनके माता पिता ब्रिटिश थे दोस्तों, और वे मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले थे। उनकी माता भी ब्रिटिश मूल की थी लेकिन उनका जन्म और पालन पोषण भारत में हुआ। रस्किन बॉन्ड ने भी हमेशा भारत में रहने का विकल्प चुना। इस मंच से उनको पुनः बधाई देते हैं और याद कर लेते हैं गिरीश कर्नाड को, एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड की आज जयंती है। उन्होंने हिंदी में उत्सव, मंथन, इकबाल, डोर, निशांत, पुकार जैसी फिल्मों में काम किया। गिरीश कर्नाड ने वर्ष 1970 में कन्नड़ फिल्म संस्कार से अपनी फिल्म के करियर की शुरुआत की थी, जिसकी पटकथा भी उन्होंने ही लिखी थी। इस फिल्म के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। इसके अलावा उन्हें 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: दोस्तों आज के नमस्कार के अंक को देते हैं यही विराम। इस सफर में मैं थी आपके साथ चंद्रकला सुथार
1: और मैं लीना माथुर, तो अनुमति दीजिए हम दोनों को
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये एफएम सेंसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ओपन शो।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टांके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों 102.1 एफएम रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मंगलवार का दिन है, सुबह के 10 भी बज चुके हैं, तो आप भी इंतजार कर रहे होंगे उस प्रोग्राम का जिसका नाम है ओपन शो। हाजिर हैं हम इसी प्रोग्राम लेकर, मैं संजय व्यास, हमारी पूरी टीम, हमारे साथी राजेश लामरोड और हमारी होस्ट कविता सांखला के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों आज हम जिस शख्सियत को आपसे मिलवाने के लिए लाए हैं वो अपने आप में बहुत विलक्षण हस्ती है जोधपुर की, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बाधा को बाधा नहीं चुनौती माना है। आप अपने जन्म से ही, लगभग जन्म से ही मैं कह सकता हूँ, दृष्टि बाधा आपको दिखाई नहीं देता, और उस दृष्टि से, उस दृष्टि की बाधा से पार जाने की जो यात्रा है, आपकी संघर्ष है, वो आपकी पूरी कहानी है। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग इन्हें जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बता दूं, आपका नाम डॉक्टर अक्षय सुराणा है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संस्कृत के शहीद गोरख राम वीर चक्र राजकीय पीजी कॉलेज ओसियां में, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संस्कृत के, और इससे पहले आपने पढ़ाई संस्कृत में की है, स्वर्ण पदक के साथ एमए किया है, फिर पीएचडी भी आपने जेएनवीयू के साथ में की है संस्कृत में, और नेट जेआरएफ आपने पहले ही प्रयास में क्लियर कर लिया था। आपको गीत संगीत का भी बड़ा शौक है, सुनने का शौक है, गाने का भी शौक है, बहुत सारी संगीत प्रतियोगिताओं में आपने हिस्सा लिया है, और क्रिकेट कमेंट्री का शौक है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो दृष्टि बाधा से पार जाने की जो यात्रा है वो आज हम आपके सामने रखना चाहेंगे। डॉक्टर अक्षय, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपका और आकाशवाणी की पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम।
0: बिल्कुल, और अगर हम आकाशवाणी के श्रोताओं की बात करें तो आप भी क्या अपने आप को आकाशवाणी के श्रोताओं के बीच में रखते हैं?
1: जी सर बिल्कुल, मैं भी आकाशवाणी का बचपन से ही यदि कहूँ तो एक श्रोता रहा हूँ। आज से लगभग 14-15 वर्ष पूर्व आकाशवाणी के स्टूडियो में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था।
0: अरे वाह, तो क्या बात है।
1: जी, आज फिर से इस स्टूडियो में आकर के वो यादें ताज़ा हो गई है। उस समय भी एफएम सनसिटी का ही एक प्रोग्राम था, असल साबुन प्रेजेंट्स शो योर टैलेंट, जिसे जफर भाई होस्ट करते थे। अब जफर खान सिंधी सर हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन उस समय उनके समक्ष मुझे अपनी प्रस्तुति देने का सौभाग्य मिला था, तो आज इस स्टूडियो में आकर के वही यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं।
0: बिल्कुल, इन्हीं ताज़ा यादों को थोड़ा सा और चटक बनाते हैं, और जो आपने प्रस्तुति शो योर टैलेंट में दी थी वो क्या थी? उसी प्रस्तुति को अगर मैं आपसे दोबारा कहूँ तो क्या कोई गाना गाने की थी वो बात, या फिर क्या बात थी वो?
1: जी सर, मैंने सिंगिंग की ही प्रस्तुति दी थी उस प्रोग्राम में भी।
0: कोई कौन सा गाना गाया था आपको अभी भी याद है?
1: जी सर।
0: कौन सा था बताइए, गा के बताइए थोड़ा सा।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: बहुत शुक्रिया
0: डॉक्टर अक्षय सुराणा। वाकई जिस तरह से आपने लय और बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाया, बहुत साफ तलफ़ुज के साथ में, तो हम आपको फिर से बधाई देंगे और आपके टैलेंट से हम परिचित हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि संस्कृत की तरफ रुझान आपका कैसे शुरू हुआ? कोई ख़ास बात थी? आप किसी और विषय में भी जा सकते थे, संगीत विषय को भी चुन सकते थे आप?
1: जी सर, ये एक बड़ी रोचक जो है
0: बात है,
1: पड़ाव है या बात है मेरे जीवन
0: जी,
1: में
0: जी।
1: कक्षा 9 में जब मैं अध्ययनरत था नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर में, तब हमारे एक संस्कृत अध्यापक आए थे श्री ओमाराम जी पालीवाल। तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था, जिस तरह से उन्होंने हम सभी को पढ़ाया और जो संस्कृत व्याकरण की बारीकियां हैं उनको हमें समझाया, किस प्रकार से वाक्य संरचना होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भाषा को यदि समझना या सीखना है या उस भाषा के प्रति हमारी रुचि या रुझान उत्पन्न होना है, तो उस भाषा में वाक्य संरचना किस प्रकार से हो सकती है, उस भाषा की व्याकरण का जो मूल है वो क्या है, तो वो उन्होंने जिस तरह से हमें समझाया, उसके बाद मेरी जो रुचि है संस्कृत विषय में वो उत्तरोत्तर बढ़ती गई। कक्षा 9 और 10 में उन्होंने हमें पढ़ाया, उसके बाद हमारे विद्यालय में संस्कृत विषय ऐच्छिक विषय के रूप में भी उपलब्ध था कक्षा 11 और 12 में, तो मैंने ऐच्छिक विषय के रूप में भी संस्कृत विषय लिया, क्योंकि कक्षा 10 में मेरे सबसे अधिक जो अंक आए थे वो संस्कृत विषय में ही आए थे, तो मुझे लगा कि मैं इस विषय में अच्छा कर सकता हूँ। और फिर जब कॉलेज में एडमिशन लिया, तब भी ये ऊहापोह की स्थिति थी कि किन विषयों को चुना जाए, क्योंकि उस समय जो परिवारजनों का या जिनसे भी मेरा संपर्क था, सभी का ये रुझान था कि मुझे प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने भी यही सोचा था। और उस समय यह ऊहापोह की स्थिति थी कि किन तीन विषयों का चुनाव किया जाए, तब भी मैंने अलग अलग लोगों से मार्गदर्शन लिया, तो यह राय मिली कि एक साहित्यिक विषय या एक भाषा का चुनाव अवश्य किया जाना चाहिए, तब मैंने कॉलेज में भी संस्कृत विषय को चुना।
0: जी, तो जो प्रशासनिक सेवाओं में जाने का की बात थी, वो समय के साथ नहीं रही या फिर आपने प्रयास किए थे और उस तरफ अभी भी प्रयास कर रहे हैं?
1: प्रशासनिक सेवाओं में जाने की जहाँ तक बात है, बिल्कुल मैंने जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया था सर, लेकिन उस समय किन्हीं कारणोंवश प्रश्न पत्र आउट हो गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में यह हर एग्ज़ाम में ऐसा सुनने को या देखने को मिल रहा है, हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो चाहे राज्य स्तर की। तो उस समय जो आरएस प्री का जो एग्जाम था उसका प्रश्न पत्र किन्हीं कारणों से आउट हो गया था,
0: तो उसके बाद फिर मन नहीं बना आपका, फिर मन ही नहीं हुआ कि उस तरफ जाया जाए, ऐसा
1: जी
0: हुआ?
1: सर, उसके बाद मन नहीं हुआ। और दूसरा, उस दरमियान मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, मैंने यूजीसी नेट एग्जाम भी क्लियर कर लिया था, तो मेरा रुझान असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति अधिक हो गया।
0: और जो जिस विषय से आपका प्यार और लगाव था संस्कृत के प्रति,
1: जी,
0: उसी विषय को पढ़ाने और पढ़ने की अब जो आपकी यात्रा है वो चल रही है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्थिति से काफी हद तक संतुष्ट होंगे।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: अच्छा लग रहा होगा आपको कि भाई हाँ, अब यही विषय, यही किताबें, इसी विषय की किताबें और इन्हीं के बीच जो है वो आपको अपना व्यावसायिक कार्य भी करना है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किसी भाषा को अगर सीखना है तो उसकी वाक्य रचना किस प्रकार की है। जैसे हम इंग्लिश और हिंदी को जानना

0: है, तो मतलब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, और इसी प्रकार हिंदी में हम वाक्य रचना करते हैं, तो वही चीज़ हम देखते हैं कि मैं जाता हूँ या मैं वहाँ स्कूल जाता हूँ। तो संस्कृत में आपको अगर वाक्य रचना की दृष्टि से मैं पूछूँ तो अंग्रेजी में तो बिल्कुल भिन्न है, लेकिन क्या हिंदी और संस्कृत की वाक्य रचना बिल्कुल एक जैसी है?
1: सर, संस्कृत की वाक्य रचना की विलक्षण बात यह है कि संस्कृत में वाक्य रचना का कोई निश्चित क्रम नहीं है।
0: यानी ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को आप कहीं भी रख
1: कहीं
0: लें तब भी
1: भी,
0: वाक्य में कोई उसके अर्थ में फर्क नहीं आएगा।
1: जी सर बिल्कुल,
0: जी,
1: ये
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: लचीलापन है इसमें।
1: बिल्कुल ये लचीलापन है और विलक्षण बात संस्कृत की यही है कि वाक्य रचना से संबंधित किसी भी पद को, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, उसको कहीं भी रख दीजिए, उस वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा।
0: आम तौर पर संस्कृत को क्लिष्ट भाषा माना जाता है सीखने के लिहाज से। आपकी क्या सोच या मत है? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शौक के नज़रिए से, कार्य उनका कुछ और है, लेकिन वो शौकिया तौर पर संस्कृत बचपन में उन्होंने पढ़ी थी, घर परिवार में माहौल था, और अब उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है कि संस्कृत एक मुश्किल विषय है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जैसा कि मैंने कहा कि यदि व्याकरण के मूल को और वाक्य संरचना को समझा जाए तो संस्कृत बिल्कुल भी कठिन नहीं है। संस्कृत में जो संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं, महर्षि पाणिनि, उनका जो व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, तो उन्होंने एक बड़ा ही विलक्षण जो कार्य किया वो यह किया कि संस्कृत में प्रकरण है, कारक प्रकरण। तो जिस प्रकार से यदि हम कारक का ज्ञान अच्छे से कर लें तो वाक्य संरचना बहुत आसान हो जाती है, और जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी पद को वाक्य संरचना में कहीं पर भी रख दीजिए, क्योंकि उसका कारण यही है कि कारक प्रकरण, कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार से जो कारक चिन्ह हैं यदि उनको ध्यान में रखते हुए हम शब्द की विभक्तियों का प्रयोग करें तो संस्कृत वाक्य रचना अत्यंत आसान हो
0: बिल्कुल,
1: जाती
0: आपको
1: है।
0: लगता है कि जो विभक्तियां हैं वो संस्कृत का सीखने के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, आधारभूत पड़ाव है।
1: जी सर बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर अक्षय, अब हम चलते हैं उस तरफ जहां हमारे दोस्त इंतजार करते हैं कि मेहमान अपनी पसंद का गाना उन्हें सुनवाएंगे।
1: जी
0: तो कौन सा गाना सबसे पहले आप हमारे दोस्तों को सुनवाना चाहेंगे?
1: जी मैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का एक राधा एक मीरा, ये गीत अपने श्रोताओं
0: इसको
1: को
0: भी थोड़ा
1: सुनाऊंगा।
0: सा गुनगुना के और हमारे दोस्तों को बताएंगे।
1: जी बिल्कुल।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वागत दोस्तों, एक बार पुनः आपका 102.1 FM रेडियो सेंसिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर अक्षय सुराणा, सहायक आचार्य संस्कृत। आप शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय पीजी कॉलेज ओसिया में पढ़ाते हैं संस्कृत विषय, और संगीत में आपकी खासी रुचि है। रेडियो के बहुत पुराने श्रोता हैं और आज हम इन्हें पूछना चाहेंगे, डॉक्टर अक्षय जी, जो दृष्टि बाधा है जिसको आपने कभी बाधा के रूप में स्वीकार नहीं किया, हमेशा एक चुनौती, और जिस चुनौती से पार पाया जा सकता है, तो ये बाधा आपके सामने कब खड़ी हुई?
2: सर, मेरे जन्म के लगभग एक माह पश्चात ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से ये प्रॉब्लम हुई मुझे, और पहले तो एक आंख को निकाल दिया गया, लेकिन फिर जो दूसरी आई है, दूसरी आंख है, उसमें भी जो है आई बॉल जो है अपने आप ही बाहर आ गई, तो उसको भी रेडियोथेरेपी करके अंदर ही अंदर शेक करके जला दिया गया था।
1: जी, तो जब बाकी जो सारे

0: विकास के मानदंड है वो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई? जैसे जिस उम्र में चलना सीखा जाता है, जिस उम्र में बोलना सीखा जाता है, वो सारे के सारे आपने माइलस्टोन्स अपने समय पर ही अर्जित कर लिए थे बचपन में?
1: जी सर, बिल्कुल।
0: बिल्कुल। तो जब पढ़ने की बारी आई तो उस वक्त आपकी रुचियां किस प्रकार की थी? 3-4 साल की उम्र में अमूमन जो है वो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, तो उस वक्त आपने भी स्कूल जाने की इच्छा जाहिर की थी, आप भी पढ़ना चाह रहे थे, किताबों से आपकी दोस्ती हो चुकी थी?
1: जी सर, उस समय धन्यवाद करना चाहूँगा और स्मरण करना चाहूँगा इस अवसर पे परम आदरणीय श्रीमती सुशीला बोहरा मैडम का, जिन्होंने एक नेत्रहीन विद्यालय की स्थापना की सन 1977 ईस्वी में। और उस विद्यालय की स्थापना के फलस्वरूप न जाने मेरे जैसे, मुझसे पूर्व भी और मेरे पश्चात भी निरंतर वर्तमान समय तक कितने ही दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो संवर रहा है उस विद्यालय में। तो उन्होंने जो कमला नेहरू नगर में नेत्रहीन विकास संस्थान विद्यालय की स्थापना की, उस विद्यालय में ही 3 वर्ष की आयु में मेरा प्रवेश हुआ और वहीं से मेरी जो शैक्षणिक यात्रा है वो आरंभ हुई।
0: तो वहाँ पर जो अध्ययन का तरीका था वो पहली क्लास से ही ब्रेल लिपि वहाँ पढ़ाई जाती थी?
1: जी सर, बिल्कुल। ब्रेल लिपि पर वहाँ विशेष ध्यान दिया जाता था और बचपन में कुछ कठिनाइयाँ आई मुझे भी ब्रेल लिपि सीखने समझने में, लेकिन स्लोली बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जब ब्रेल लिपि समझ में आने लगी तो चीज़ें जो है वो आसान होती गई।
0: अभी भी जैसे आपको कोई किताब पढ़नी होती है
1: जी
0: तो अब तो चूंकि तकनीक आपको बहुत सपोर्ट करती है, ऑडियो बुक्स के ज़रिए आप किताब पढ़ सकते हैं,
1: जी
0: बट जब ऑडियो बुक्स नहीं थी आपके प्रारंभ में, जब आपने शिक्षार्जन करना शुरू किया था उस वक्त, तो ब्रेल लिपि ही एकमात्र तरीका थी, और उस ब्रेल लिपि में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हुआ करती थी?
1: जी सर, विद्यालय स्तर की पुस्तकें उस समय पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। परेशानी तब होती थी जब किसी वर्ष यदि पाठ्यक्रम परिवर्तित हो जाए तो तुरंत जो है वो ब्रेल पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी।
0: बिल्कुल। तो ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ने का आपका सिलसिला बहुत पुराना हो चुका है, और अभी भी आप ये महसूस करते हैं कि जो आपको अध्ययन के इतर पुस्तकें पढ़नी होती हैं या पढ़ानी होती हैं या उनको कंसल्ट करना होता है, रेफर करनी होती है, तो वो ब्रेल लिपि में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो पाती हैं क्या?
1: नहीं, ये अभी भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पर्याप्त मात्रा में जो अध्ययन के इतर या अध्ययन से संबंधित, अध्ययन अध्यापन से संबंधित भी जो पुस्तकें हैं वो समस्त पुस्तकें ब्रेल में उपलब्ध हो पाना अभी भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और कई बार यदि हमें बहुत महती आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है, तो हमें स्वयं अपने स्तर पे उसका खर्च वहन करके उस पुस्तक को प्रयास करके किसी ब्रेल प्रेस से छपवाना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: अगर हम आपकी इस संघर्ष यात्रा के पॉजिटिव्स की बात करें तो प्रारंभ में जैसे आपने बताया कि जो नेत्रहीन विकास संस्थान की जो स्कूल थी वहाँ आपने पढ़ाई शुरू की, और उसके बाद आपको निरंतर शिक्षक ऐसे मिलते गए जिनसे आपकी यात्रा आगे बढ़ी, लेकिन स्कूल में जब आप गए और घर परिवार में जब आप आते थे, तो ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको चुनौती देती हुई प्रतीत होती थी? दृष्टि की बाधा तो एक थी, उसके अतिरिक्त और भी कुछ चीजें ऐसी हुआ करती थी जो आपको चुनौती देती थी और आपको लगता था कि इसके भी पार जाना पड़ेगा, इससे भी लड़ना पड़ेगा, यहां भी एक संघर्ष है?
1: विद्यालय शिक्षा तक तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि विद्यालय में जैसे मेरे जैसे ही दृष्टिबाधित विद्यार्थी थे तो उस विद्यालय स्तर की शिक्षा तक तो इस प्रकार की किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, जब बोर्ड एग्जाम देने की बारी आई कक्षा 10 और 12 में, तो स्क्राइब लेकर के किसी और व्यक्ति को बिठा करके अपनी परीक्षा देना जो पहला अनुभव था कक्षा 10 में, ये एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था कि हम बोलेंगे और कोई और हमारे लिए लिखेगा तो किस प्रकार से ये संभव हो पाएगा। हम बोलेंगे क्या उसको हूबहू जैसा हमने बोला है वैसा ही लिखा जाएगा या नहीं, कैसे हमारी मार्किंग होगी, ये जो है वो शंका या ऊहापोह मन में अवश्य थी।
0: जी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो शंका भी आपकी दूर हो गई?
1: जी सर, बिल्कुल। बताना चाहूँगा कक्षा 10 में मैंने 2007 की बात कर रहा हूँ, 80% अंक प्राप्त किए थे, तो उस समय एक विजुअली चैलेंज्ड विद्यार्थी के लिए

0: ये एक अच्छा अचीवमेंट था
1: बहुत अच्छा, बिल्कुल
0: जी।
1: बहुत अच्छा। और
0: और
1: उस वक्त 80% जो अंक है वो आज जैसे 90 या 95 से ऊपर अंकों को बहुत अच्छा माना जाता है, तब 80% अंकों को उस जमाने में यानी 2007 की अगर हम बात करें तो काफी अच्छे माने जाते थे।
0: जी सर बिल्कुल, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मेरे विद्यालय का जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा फॉर्म भरवाया और जिला स्तर जोधपुर के द्वारा मुझे इस उपलब्धि के लिए प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित भी किया गया।
1: बिल्कुल, निरंतर आपको सम्मान, प्रशस्तियाँ और आपको अचीवमेंट्स मिलते रहे जिनसे आपकी यात्रा आगे बढ़ती रही। रोड ब्लॉक्स भी बहुत आए होंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे दोस्त कह रहे हैं कि एक गाना और सुनने का वक्त आ गया है, तो आप हमारे दोस्तों को कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? थोड़ा सा गुनगुनाते हुए बताइए।
0: जी

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम में। डॉक्टर अक्षय सुराणा हमारे साथ में है, सहायक आचार्य संस्कृत शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय पीजी कॉलेज ओसिया। आप दृष्टि बाधा से पार जाने की यात्रा हमें सुना रहे हैं। तो डॉक्टर अक्षय, स्कूलिंग तक तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे आप कॉलेज में आए, विश्वविद्यालय में आए, तो चूंकि जो आप विशेष योगीजन के हिसाब से बनी हुई स्कूल में आपने पढ़ाई की, लेकिन कॉलेज में आपको जाने के लिए जो कुछ दिक्कतें हुई उनके बारे में बताइए, पढ़ाई के दौरान।
2: जी सर, बिल्कुल। कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जैसे ही मैंने प्रवेश लिया तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्कूल तक तो विशेष योग्यजन या मेरे जैसे ही विद्यार्थी मेरे साथ थे, तो हमारी जो चुनौतियां थी, जो समस्याएं थी या उनका समाधान हम एक दूसरे से मिल बांट कर निकाल लिया करते थे।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन जब विश्वविद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों के साथ प्रवेश हुआ तो कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे मैं यदि बात करूं, मेरा संस्कृत विषय था बीए फर्स्ट ईयर से ऐच्छिक विषय के रूप में, तो मुझे आरंभ में यह दिक्कत हुई कि मैं किस प्रकार से इस विषय को जो है वो पढ़ पाऊंगा, किस प्रकार से मुझे ऑडियो बुक्स या ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, या यदि मैं ब्रेल पुस्तकों की बात करूं तो क्या कॉलेज में मुझे कुछ ब्रेल पुस्तकें मिल पाएंगी या नहीं, ऐसे कई प्रश्न थे। तो फैमिली के सपोर्ट से और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन से इन समस्याओं का भी धीरे धीरे समाधान होता गया।
1: तो विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है वहां पर पर्याप्त संख्या में संस्कृत में ब्रेल में पुस्तकें उपलब्ध थी?
2: नहीं सर, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में ब्रेल में पुस्तकों की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान में ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता नहीं है।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो यानी इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया है लाइब्रेरी में। और फिर आपको क्या बाहर से मंगवानी पड़ी ब्रेल में पुस्तकें?
2: जी सर, जो पुस्तकें उपलब्ध थी या ब्रेल में छपी हुई थी उन पुस्तकों को मैंने मंगवाया, लेकिन कई बार जिस समय हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है उस समय तक हमारे पास जानकारी ही नहीं होती कि ये पुस्तक

0: तक ब्रेल में उपलब्ध है या छपी हुई है। तो जब तक मैंने ग्रेजुएशन की, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ग्रेजुएशन में जो पाठ्यक्रम में पुस्तकें थी उनमें से ये पुस्तक ब्रेल में छपी हुई है। मेरी ग्रेजुएशन, या यूं कहूँ इवन पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तब मेरा संपर्क हुआ, बूंदी में ही हमारे एक दृष्टिबाधित लेक्चर लगे हुए हैं कॉलेज में,
1: जी
0: श्री कौशल किशोर गोठवाल, उनसे मेरा जब संपर्क हुआ तो मुझे जानकारी मिली कि कई पुस्तकें ब्रेल में अलग अलग जगह पर, दिल्ली में, हरियाणा में या देहरादून में छपी हुई हैं। तब मैंने उन पुस्तकों को मंगवाया और मुझे जो है अब अध्यापन कार्य में बहुत सुविधा मिलती है।
1: जी तो डॉक्टर अक्षय, आप इस बात को क्या मानते हैं और इस बात को कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में जिस भी

0: कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में जिस भी विषय में पढ़ाई की जाए या करवाई जाए, वहाँ पर उसी विषय की ब्रेल में पुस्तकें होनी अनिवार्य है। जिस तरह से हम देखते हैं कि ट्रेन में हम सफ़र करते हैं, तो उसमें ट्रेन में आपको अपनी बर्थ नंबर अगर तलाशनी है, तो जो दृष्टिबाधित है वो अपनी बर्थ नंबर जो है वो ब्रेल में जो खुदे हुए अक्षर होते हैं उनसे वो तलाश कर सकते हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में ब्रेल में पुस्तकें होनी अनिवार्य है। अगर कोई विद्यार्थी विशेष योग्यजन उसमें पढ़ाई कर रहा है, तो उसके अनुरूप पुस्तकें होनी चाहिए।
1: जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध करवाना या होना हो सकता है विश्वविद्यालय के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो, लेकिन जहाँ तक संभव वो हो तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा विश्वविद्यालय में इतना तो हो ही सकता है, विश्वविद्यालय के यदि नुमाइंदे प्रशासनिक लोग सुन रहे हों इस कार्यक्रम को, तो मैं ये ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में जो विजुअली चैलेंज्ड विद्यार्थी हैं मेरे जैसे, उनके लिए टॉकिंग लाइब्रेरी है जिसमें ऑडियो बुक्स कन्वर्ट की जाती हैं प्रवाचक या रीडर के माध्यम से, तो ये व्यवस्था तो विश्वविद्यालय में कम से कम की ही जा सकती है।
0: क्या नई तकनीक ने अब ब्रेल लिपि की अनिवार्यता को कम किया है? क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो AI टूल्स आए हैं, उसने विजुअली चैलेंज लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है या लाने वाले हैं। और पुस्तकें आप बोल के उनको सीधा ही जो है पुस्तकों को आप ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट टू वॉइस वाला जो सॉफ्टवेयर या टूल आए हैं, जिसमें आप सीधे टेक्स्ट से वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आने वाला समय जो है वो विजुअली चैलेंज्ड जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है तकनीक की मदद से।
1: जी सर, बिल्कुल। तकनीक जो है वो निश्चित रूप से एक यदि कहूँ मैं कि बून का या वरदान का कार्य कर रही है, जिससे हमें कंप्यूटर चलाने में या AI का इस्तेमाल करके जो है वो बहुत सहायता मिली है निश्चित रूप से। लेकिन AI जो है वो ब्रेल की महत्ता को कहीं भी कम नहीं करता और ना ही करना चाहिए। जो हमारे विद्यालय भी हैं, जो विशेष योग्यजन विद्यालय हैं, उनमें भी मैं आजकल देख रहा हूँ कि विद्यार्थियों में या जो विद्यालय के प्रशासक हैं उनके मन में ब्रेल के प्रति जो रुझान है वो कम हो रहा है। जो पुस्तकें ब्रेल में छप चुकी हैं, प्रकाशित भी हैं, उनको भी विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, या जो विद्यालय है या जो जिन्हें मंगवानी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, वो भी उन पुस्तकों को मंगवाने में उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं जितनी पहले लिया करते थे।
0: डॉक्टर अक्षय, क्या आपने स्वयं भी कई पुस्तकों को ब्रेल में अनुदित किया है? आपके पास ऐसी मशीन है जो आप ब्रेल लिपि में पुस्तकों को कन्वर्ट कर सकते हैं?
1: मैंने कई पुस्तकों को ब्रेल प्रेस से संपर्क करके छपवाया है सर। जैसे मैं यदि बात करूं,
0: लेकिन कोई घर में अगर चाहे ब्रेल में उसको करना, तो मुश्किल काम है ये?
1: मुश्किल कार्य है। मशीन
0: मुश्किल
1: जो
0: है।
1: है वो बड़ी कॉस्टली है और उसके लिए परमानेंट जो ऑपरेटर है वो भी रखना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर अक्षय, अब हम एक और गीत की तरफ बढ़ते हैं आगे।
1: जी
0: और अगला कौन सा गीत है जो आप गुनगुनाकर हमारे दोस्तों को बताना चाहते हैं, और फिर हम उस गीत को रेडियो के माध्यम से सुनवाएंगे?
1: जी कभी किसी को मुकम्मल जान

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बने
1: राज्य
0: रहने के लिए
1: सरकार व केंद्र
0: 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर। ओपन शो प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अक्षय सुराणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट संस्कृत में। आप शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय पीजी कॉलेज ओसियां में पढ़ा रहे हैं। तो ओसियां तो धार्मिक नगरी है डॉक्टर अक्षय जी।
2: जी सर बिल्कुल।
0: और वहाँ पर इस गर्मी में भी दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं
2: जी
0: वहाँ पर
2: बिल्कुल
0: माता जी के दर्शन करने, है
2: जी
0: ना?
2: बिल्कुल।
0: जी, बहुत पुराना ये केंद्र है और उस पुराने केंद्र में रह करके आप भारत की सबसे पुरानी भाषा को पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं।
2: बिल्कुल सर।
0: तो अब संस्कृत को लेकर मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि संस्कृत को लेकर लोगों का मानना है

0: कि ये मुश्किल भाषा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो बच्चे हैं, आप तो चूंकि बड़ों को पढ़ाते हैं, स्कूल लेवल पर संस्कृत को लेकर बच्चों में अभिरुचि कैसे विकसित हो, इसका कोई आप ऐसा सुझाव बता सकते हैं? क्योंकि कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कई बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, तो कैसे संस्कृत की तरफ उनको मोड़ा जाए? क्योंकि भारतीय संस्कृति को अगर समझना है, भारतीय संस्कृति और भारत की अगर आत्मा को समझना है, तो वो समझने का काम संस्कृत के जरिए ही हो सकता है। तो संस्कृत एक कड़ी है, हमें हमारी जड़ों से जोड़ने वाली। कैसे आप बच्चों को उसकी तरफ मतलब जोड़ना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सर, बहुत ही सारगर्भित, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। तो बच्चों की यदि मैं बात करूं तो सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि महाविद्यालय में लेक्चर से पूर्व मैं विद्यालय में भी व्याख्याता था, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा में, और उससे पहले भी दो स्थानों पर व्याख्याता के रूप में, स्कूल व्याख्याता के रूप में मैंने सेवाएं दी। तो विद्यालयी शिक्षा में मैंने ये महसूस किया कि जब संस्कृत विषय आरंभ होता है, हमारे यहाँ आमतौर पर राजस्थान बोर्ड में कक्षा 6 से संस्कृत विषय विद्यार्थियों के लिए आरंभ किया जाता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सरकार से निवेदन करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जिस प्रकार से हिंदी, इंग्लिश या अन्य विषय जो है वो कक्षा 1 से ही विद्यार्थियों के लिए आरंभ कर दिए जाते हैं, तो क्यों ना संस्कृत जैसे विषय को कक्षा 1 से आरंभ किया जाए विद्यार्थियों।
0: क्या आप नहीं मानते कि बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा? त्रिभाषी फॉर्मूला भी है जिसमें आपको कोई एक अन्य भाषा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त पढ़नी है, फिर संस्कृत आप और पढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से एक बच्चा जो है उस पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा?
1: उसके उसका समाधान ये हो सकता है सर कि पाठ्यक्रम लचीला रखा जाए और भाषा के आरंभिक ज्ञान को विद्यार्थियों को समझाने का उद्देश्य रहे, वाक्य संरचना है या भाषा का जो आरंभिक ज्ञान है, या जैसे संस्कृत के विषय में मैंने बात की, कारक प्रकरण की जानकारी देना, छोटे छोटे वाक्य हम कैसे बना सकते हैं ये विद्यार्थियों को बताना। तो यदि कक्षा 1 से विषय आरंभ किया जाए तो बड़ी कक्षा तक आते आते विद्यार्थियों में स्वतः ही उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। और अभी वर्तमान में जो संरचना है, कक्षा 6 से भी यदि उस विद्यार्थी को एक अच्छे शिक्षक के दिशा निर्देशन में संस्कृत विषय समझने का या सीखने का अवसर मिले, तो मैं अवश्य ये मानता हूँ कि विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संस्कृत विषय, क्योंकि संस्कृत की यदि बात करें तो संस्कृत हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार है। यदि भारतवर्ष की आत्मा को, जैसा आपने कहा, समझना है तो संस्कृत विषय को जानना, और जैसा कि आप भी सहमत होंगे मेरी इस बात से, हमारे शिक्षा प्रणाली में पूर्व में एक विषय पढ़ाया जाता था, नैतिक शिक्षा, वर्तमान में इस विषय के प्रति कोई जो है वो रुझान नहीं है, ऐसा कोई विषय हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यदि हमारे विद्यार्थी नौकरी पेशा हो जाएं, बड़े बड़े नौकरशाह बन जाएं, शिक्षाविद बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, सब कुछ बन जाएं, लेकिन वे यदि नैतिक दृष्टि से, अपने चारित्रिक दृष्टि से यदि समृद्ध नहीं होंगे, तो उनका उस पद पे जाना मुझे लगता है कि वो उनके व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं करेगा।
0: बहुत अच्छी बात। और डॉक्टर अक्षय, जो ये मानते हैं कि संस्कृत के जरिए रोजगार पाना मुश्किल है, उनको क्या कहेंगे? रोजगार के अवसर संस्कृत में पर्याप्त उपलब्ध हैं?
1: जी सर, बिल्कुल। शैक्षणिक दृष्टि से एक शिक्षक के रूप में संस्कृत विषय में पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध हैं। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो एक थर्ड ग्रेड शिक्षक से लगा करके, जो कि कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हैं, लेवल 2 के अध्यापक, वहां से लगा करके कॉलेज व्याख्याता तक का या असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सफ़र जो है वो तय किया जा सकता है एक शिक्षक के रूप में। और हमारे राजस्थान में तो संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय भी संचालित हो रहे हैं जिनमें केवल संस्कृत माध्यम से ही अध्ययन अध्यापन होता है, तो उस ओर भी विद्यार्थी जो है वो यदि जाना चाहें तो जा सकते हैं। और शिक्षण के अलावा भी संस्कृत में पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC की यदि मैं बात करूं, संघ लोक सेवा आयोग जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रतिष्ठित एग्जाम आयोजित करता है, परीक्षा करवाता है, उसमें भी मुख्य परीक्षा में हमें

0: विषय चयन करना होता है। तो यदि कोई विद्यार्थी संस्कृत का विद्यार्थी है, संस्कृत में उसकी रुचि है, इच्छा है स्वेच्छा से, तो उस मुख्य परीक्षा में भी वह विद्यार्थी संस्कृत को एक मुख्य विषय के रूप में चयन कर सकता है।
1: बिल्कुल। और रोजगार के अतिरिक्त अगर आप संस्कृत में रुचि रखते हैं
0: जी
1: तो जैसे आपने बताया कि महर्षि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है
0: जी
1: वो अपने आप में एक सूत्र आधारित ग्रंथ है जिसमें लगभग 4000 से अधिक सूत्र दिए हुए हैं, यानी मैं ये कहूँगा कि कैप्सूल के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको सरलतापूर्वक संस्कृत सीखनी है, पढ़नी है और उसमें रुचि रखते हैं तो कौन सी ऐसी पुस्तकें आप सुझाना चाहेंगे जो आधुनिक समय में लिखी गई हैं और जिनके जरिए आप संस्कृत को, आपने जैसे कहा कि जो कारक प्रकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो मतलब अध्ययन के अतिरिक्त आप अपनी रुचि के अनुसार अगर संस्कृत को पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो कौन सी पुस्तकों की आप सलाह देंगे?
0: जी बिल्कुल।
1: तो क्या पाणिनि जी की जो पुस्तक अष्टाध्यायी है उससे शुरुआत की जाए या किसी और पुस्तक से शुरुआत करके बाद में वहां तक पहुंचा जाए?
0: जी, जहाँ तक पाणिनि अष्टाध्यायी की बात है तो वह सूत्रात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ है, तो आरंभ पाणिनि अष्टाध्यायी से करने की बजाय मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैं ये सलाह दूंगा कि संस्कृत की एक प्रखंड विदुषी हैं डॉक्टर पुष्पा दीक्षित महोदया छत्तीसगढ़ में, उन्होंने पाणिनीय प्रक्रिया पर आधारित अपनी पुस्तकें लिखी है जो आरंभ से जो विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जो संस्कृत जानना या समझना चाहता है या सीखना चाहता है तो उनकी जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ करके आरंभिक ज्ञान और आगे बढ़ते हुए जो पाणिनीय अष्टाध्यायी का ज्ञान है उसको भी किया जा सकता है। डॉक्टर पुष्पा दीक्षित महोदया की जो पुस्तकें हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा।
1: और डॉक्टर अक्षय, जो गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं, आप ये मानते हैं कि आप पुस्तकें चाहे कोई भी पढ़ें लेकिन अंततः आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी की तरफ आना ही होगा, इसकी अनिवार्यता आप महसूस करते हैं?
0: जी सर बिल्कुल। संस्कृत विषय को और संस्कृत व्याकरण को यदि हमें जानना समझना है सीखना है तो पाणिनि अष्टाध्यायी को तो हमें समझना ही होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी बातें डॉक्टर अक्षय सुराणा आपसे हुई हैं और जो दृष्टि बाधा के पार की चुनौतियां हैं वो यात्रा आपकी किस प्रकार की रही उसकी कुछ झलक हमने महसूस की है। जो रोड ब्लॉक्स हैं, जो दिक्कतें आपको महसूस हुई, जैसे आपने जिक्र किया कि कॉलेज विश्वविद्यालय में जब आप आए तो दिक्कतें हुई, उसके अतिरिक्त आम जीवन में, क्योंकि ये जो दुनिया बनी हुई है ये विशेष योग्यजनों के लिहाज से नहीं बनाई हुई है, उस पर्याप्त संवेदनशीलता से नहीं बनाई हुई है। जैसे हम देखते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, फिर रैंप बनने शुरू हुए, तो आप ये महसूस करते हैं कि आम दुनिया के जो कारोबार या व्यापार हैं उनमें जो दृष्टि बाधित हैं उनके लिए अभी भी पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है, और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: जी सर बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं उनके लिए रैंप की जो सुविधा है या व्यवस्था अब होने लगी है कहीं कहीं पर, तो इसको यदि मैं एक शब्द प्रयोग करूं, एक्सेसिबल, चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हों चाहे विजुअली चैलेंज्ड हो, उनके लिए जो खास करके सरकारी जो प्रेमिसेस हैं या बिल्डिंग है वो एक्सेसिबल हो, या उनमें ब्रेल में, जैसा कि आपने कहा कि ट्रेन में यदि किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपनी सीट या बर्थ पहचाननी हो तो वहाँ लिखा होता है, उसी तरह से यदि जो हमारी सरकारी बिल्डिंग है वो एक्सेसिबल हो चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड हो या विजुअली चैलेंज्ड हो, तो ये हमारे यहाँ अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई जगह पर हमें एक्सेसिबिलिटी मिलती है लेकिन कई जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाती।
1: तो अगर शुरुआत की दृष्टि से अगर कहा जाए तो जो पब्लिक डीलिंग वाली सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए बैंक हुआ या पोस्ट ऑफिस हुआ, वहाँ इसकी सबसे पहले अनिवार्यता लागू होनी चाहिए, ये आप मानते हैं?
0: बिल्कुल।
1: और जहाँ पर आम लोगों का आना जाना अपेक्षाकृत कम होता है या कभी कभार होता है वहाँ बाद में इसे किया जा सकता है।
0: बिल्कुल
1: जी
0: जी।
1: ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आया है जिसे हम सब महसूस तो करते हैं लेकिन उसकी अनिवार्यता हम उस शिद्दत और तीव्रता के साथ महसूस नहीं कर पाते जैसी तीव्रता के साथ विशेष योग्यजन, खास करके जो दृष्टि बाधा से जूझ रहे हैं, वो लोग महसूस करते हैं। और इस दुनिया को थोड़ा सा और संवेदनशील होने की आवश्यकता है ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़े। इस दुनिया में जिस तरह से हम जिस फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ घूम चल फिर सकते हैं, उसी आज़ादी के साथ चलने फिरने का अधिकार हमारे तमाम

0: भाइयों साथियों को है। और ये जो सुझाव है डॉक्टर अक्षय का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। तो इस नोट पर डॉक्टर अक्षय, हम आपसे इस प्रोग्राम में अब विदा लेना चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम का समय समाप्त हो गया है। और आप चलते चलते कुछ हमारे दोस्तों को, श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को दो पंक्तियाँ गुनगुना करके यही संदेश देना चाहूँगा कि

0: शुक्रिया।
1: बहुत धन्यवाद। और इस मौके पर आप अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त या साथी या आपके जो रोल मॉडल्स हैं जो स्वयं भी दृष्टि बाधित हैं, उन्हें अगर याद करना चाहें तो आप उनके नाम ले सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उन्हें शुक्रिया कह सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं इस हमारे मंच से।
0: जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मेरे माता पिता जो कि मेरे साथ मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं, और मेरी फैमिली, फैमिली या पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना जहाँ पर भी आज मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति यदि किसी मुकाम पे पहुँचता है तो वो संभव नहीं है। और कॉलेज में जिनका मुझे सर्वाधिक सपोर्ट मिला, कॉलेज शिक्षा से लगा करके मेरी पीएचडी तक, प्रोफेसर सरोज कौशल मैडम जिन्होंने मुझे पीएचडी कराई, मेरे शोध निर्देशन का दायित्व स्वीकार किया, और जैसा आपने कहा दृष्टि बाधा में यदि कोई मेरे रोल मॉडल हैं दृष्टि बाधित व्यक्तियों में तो संगीतकार दादू रविंद्र जैन साहब।
1: वाह बिल्कुल
0: जी
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्षय सुराणा। हम आपसे इस बातचीत में हमें बहुत मज़ा आया और साथ ही प्रेरणा भी मिली, बहुत सकारात्मक बातचीत रही। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में आज इतना ही। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ओपन शो, ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन का रेडियो।

0: शालीनता है जिसकी शान,
1: यहाँ पे सब शांति शांति है।
0: सौम्यता है इसकी पहचान,
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM सन सिटी, सन सिटी, सन सिटी
2: रेडियो।
3: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हवा में घुलने वाली आवाजों और दिल को छू लेने वाले एहसासों के साथ हाजिर हो चुकी हूँ मैं कविता सांगला। स्वीकार कीजिए, नमस्कार। अगले पूरे एक घंटे तक बातें होंगी दिल की, साथ होगा बेहतरीन संगीत का, कुछ किस्से, कुछ यादें और ढेर सारी बातें। तो जहां पर भी हैं अभी आप, बैठिए और मुस्कुराइए, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा शो मन का रेडियो। और हाजिर हो चुकी हूँ मैं कविता सांगला, एक बार फिर से स्वीकार कीजिए नमस्कार। और शुरुआत इस शानदार गीत के साथ।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
3: श्रोताओं, गर्मी की धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर रिश्तों में प्यार हो, घर में हंसी हो और दिलों में अपनापन हो तो हर मौसम खूबसूरत बन जाता है। और आज अगले पूरे एक घंटे तक हम इसी खूबसूरती को बरकरार रखेंगे और बात करेंगे गर्मियों की, छुट्टियों की, बचपन की, मस्ती की, युवाओं की जिम्मेदारियों की और हमारे बुजुर्गों के प्यार की। जानेंगे इन सभी के मन की बातें मन के रेडियो प्रोग्राम में, तो तैयार हो जाइए मस्ती, यादों और शानदार संगीत के सफर के लिए।

श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर के FM सनसरी चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन का रेडियो। और श्रोताओं, बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, जो कि उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। तो इन छुट्टियों में अपने बच्चों को उनके मन की करने दीजिए, थोड़ा सा उनके मन को भी समझिए, क्या चाहते हैं वो इन छुट्टियों में। उन्हें ना चिंता है सुबह जल्दी उठने की, बस खेलने की चिंता उन्हें जरूर है कि आज हम क्या नया गेम खेले। तो इसमें पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है? श्रोताओं, माता पिता की यही जिम्मेदारी है कि उनकी छुट्टियों को सिर्फ मोबाइल या टीवी तक सीमित ना होने दें, उनके साथ नए नए गेम खुद भी खेलिए। इंडोर गेम्स को बढ़ावा दीजिए बाहर की गर्मी को देखते हुए, साथ ही उन्हें दिन के समय, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, भीषण गर्मी पड़ रही है, परिवार के साथ समय बिताना सिखाइए। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन, ये सब मिलकर एक साथ कैसे रहें, ये चीजें माता पिता ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। साथ ही थोड़ी बहुत उनके मन की भी कीजिए, ताकि उनके लिए ये खुशियां, ये छुट्टियां खुशियों से भर जाएं।

श्रोताओं, गर्मी की छुट्टियां सिर्फ बच्चों की नहीं, युवाओं की भी होती है। तो इन छुट्टियों में युवाओं का मन क्या करता है? क्या उनका मन सिर्फ यही कहता है कि देर तक सोए रहे, मोबाइल में रील चलाते रहे, फोन को दिन भर देखते रहे? अगर हाँ तो ये गलत बात है। युवाओं के लिए जो छुट्टियां हैं वो सिर्फ आराम नहीं, खुद को बेहतर बनाने का मौका होती है। अगर आज का युवा चाहे तो इन छुट्टियों में नई स्किल सीख सकता है, फिटनेस पर ध्यान दे सकता है, अपने परिवार को समय दे सकता है। और श्रोताओं, युवाओं में थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है तो, और साथ ही गर्मी भी बहुत तेज है, तो गर्मियों में तो गुस्सा थोड़ा जल्दी ही आता है। तो इसलिए अपनी बातों में मिठास रखिए, परिवार को समय दीजिए, बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार देकर देखिए ना, आपकी छुट्टियां भी एक त्योहार बन जाएगी।

0: एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियाँ रे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है तुम पढ़ो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी जोधपुर के FM सेंसिटिव चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन का रेडियो और आज मैं हूं आपके साथ कविता सांखला।

श्रोताओं, घर की असली दौलत बुजुर्गों का प्यार होता है। उनके आशीर्वाद में ही खुशियों का संसार होता है। झुककर जो सुन ले उनकी बातों को ध्यान से, उसके जीवन में हमेशा सुख और सम्मान होता है। जी हाँ श्रोताओं, घर के बुजुर्ग वो छांव है जो हर गर्मी में सुकून देती है। कभी उनके पास बैठिए, उनकी पुरानी कहानियां सुनिए, यकीन मानिए उनके चेहरे की मुस्कान पूरे घर को खुश कर देती है।

पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, एक समय था जब छुट्टियों का मतलब होता था नानी का घर, आम का पेड़, गिली डंडा और शाम तक खेलना। और आज मोबाइल, रील्स और ऑनलाइन गेम्स। श्रोताओं, टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन रिश्तों से बड़ी नहीं है। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, एहसासों से जिए जाते हैं और अपने वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी साथ निभा जाते हैं।

श्रोताओं, छुट्टियां परिवार को जोड़ने का समय होती है। रात को साथ बैठकर बातें कीजिए, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, साथ में खाना खाइए, क्योंकि यादें पैसों से नहीं समय से बनती है।

मुस्कुराहटों के साथ ये महफिल हमेशा सजाए रखना, अपनों के रिश्तों को दिल से निभाए रखना। फिर हम मिलेंगे नई बातों और नए एहसासों के साथ, तब तक अपने चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान बनाए रखना और साथ FM सनसिटी चैनल को यूं ही सुनते रहना।

0: बातों का ये सफर अब यहीं थमता है, दिलों का रिश्ता मगर हमेशा कायम रहता है। फिर मिलेंगे नए दिन, नए अंदाज और नई मुस्कान के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों का साथ निभाते रहिए। और दीजिए मन का रेडियो शो से कविता सांखला को इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन का रेडियो। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। इस समय दिन के 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवम्बर 2025 के आदेश में

0: संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्नाडे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज है और शिवराम का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
2: वो क्या है ना कि आजकल

0: मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

देखे ना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती, इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में, प्रदीप के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती है धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है, और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है, और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार आशा भोसले की आवाज में. हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से. प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत. आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से. प्रदीप की आवाज, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत, और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी, और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है, और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका हमारा हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नजर से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई, नादानी।

या उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार, संघर्ष नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म, विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक, विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता, आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है। प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतन प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पा लेने के लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालेना ही प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही हैं। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है, हम सभी मिट्टी से बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर, रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल साफ, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत, सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या है, यानी जीवन कितना सत्य है आपके लिए। ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं। और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है, बस इतना बताइए। और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल एस जी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्मों नेम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटकेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में, किसी भी चीज को हम नहीं देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ, जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपनों, अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियां, शैतानियां और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है, और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है परिवार के रूप में होती है, जहां हंसी खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है। और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी, और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे कौश होता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब वो सब बचपन फूलों सी हंसी, संगी, साथी, सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है, और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है शैशव काल की मुस्कान। किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना थी परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल, विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्णता, तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया, तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था की सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत। वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोखों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है, जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन

0: मन चंचल मन बावरा, समझे न कोई बात, कभी खुशी में झूम उठे कभी रोए आधी रात।
1: कभी सपनों के संग उड़कर छूले ऊंची सौगात, कभी अपने ही साये से करता ये सवालात। सखियों, आज के नारी वाटिका में आपकी अपनी दो सखियां मधु बनर्जी और
0: आशा अडवाणी
1: के साथ होंगी मन की बातें।
0: वही मन जो हम सबको चला रहा है अपनी चाल, तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की परिकल्पना पूरे मन के साथ की है सफलता चारण ने।

0: सखियों, मन जो है वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मन जो कभी समंदर की तरह शांत तो कभी तूफानों सा बेचैन, कभी छोटी सी खुशी में खिल उठता है तो कभी छोटी सी बात पर टूट भी जाता है। अजीब है ना ये मन।
1: किसी की एक मुस्कान से पूरा दिन रोशन हो जाता है और किसी की एक बात से रातों की नींद भी छीन लेता है ये मन। कभी मन बच्चों की तरह जिद करता है, कभी माँ की तरह संभालता है यही मन, तो कभी परिंदों की तरह उड़ना चाहता है, तो कभी अकेले में चुपचाप से अपने आप से बातें करके अपने दर्द को याद करके रो भी लेता है ये मन।
0: कभी ये बीते कल की गलियों में भटकता हुआ नजर आता है, तो कभी आने वाले कल के सपनों में रंग भरने लगता है। मन ही तो वो आईना है जिसमें हमारे डर भी दिखते हैं और हमारे हौसले भी।
1: और मधु, जब ये मन खुश होता है ना, तो सिंपल सी सुबह भी एक त्योहार की तरह लगने लगती है, और जब मन उदास होता है तो भीड़ में भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। इसलिए कहते हैं ना, मन को समझ लेना जिंदगी को समझ लेना है।

0: सखियों, जब हम खुश होते हैं ना तो हमारे मन में एक तारा गूंजता है। ये जो मन है ना, एक खिड़की की तरह होता है ना आशा। सुबह सुबह जब हम अपने कमरे की खिड़की खोलते हैं ना, तो हमें दिखती है दौड़ती भागती गाड़ियां, धूप, आसमान। लेकिन कभी सोचा है, एक खिड़की जो है वो हमारे अंदर भी है, हमारे भीतर, जिसे हम कहते हैं मन की खिड़की।
1: और पता है मधु, बाहर का मौसम चाहे कैसा भी हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो या कभी कड़ाके की ठंड, अगर हमारे मन की खिड़की साफ है तो जिंदगी हमेशा हसीन लगती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इस खिड़की पर उदासी, शिकायतें या अतीत की यादों की धूल जम जाती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ कि हम अक्सर बाहर की दुनिया में कमियां ढूंढते हैं आशा, जबकि सच ये है कि जो चश्मा है ना वो हमारे मन पर लगा होता है। अगर मन की खिड़की से उम्मीद और पॉजिटिविटी की हवा हम अंदर आने देना, तो हर छोटी सी चीज हमें खुशियां दिखने लगती हैं। और मन जो है ना, उसको कहते हैं ना बहुरूपिया है, बहुत से उसके रूप होते हैं। कभी मन चंचल होता है तो कभी मन एकदम उदास हो जाता है।
1: न जाने कितने भेष बदलता है ये मन। मतलब जितने हमारे विचार चलते हैं ना, उतने ही हमारे मन के अलग अलग रूप हैं। तो
0: बिल्कुल
1: आपको अपने विचारों पर ध्यान रखना है कि इन मन को कौन सा जामा पहनाना है। जो विचार आपने धारण कर लिया, मन उसी की ओर चल देता है। और जिंदगी वैसी नहीं है जैसी ये बाहर दिखती है, बल्कि जिंदगी वैसी है जैसी हम इसे अपने मन की खिड़की से देखते हैं। तो खिड़की बदलिए, यानी विचार बदलिए, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा।
0: बिल्कुल, लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और यादों का हिसाब है जिंदगी। तो क्यों ना आज हम सब मिलकर अपने मन की ये जो खिड़की है ना, इसको थोड़ा सा साफ करें। सखियों, जो पुरानी बातें हमें तकलीफ देती है ना, उन्हें साफ कर दें, बाहर जाने दें और मन को थोड़ा हल्का कर लें।
1: हाँ, और एक बात और, जो लोग हमें मुस्कुराने की वजह देते हैं, उन्हें इस खिड़की के रास्ते दिल में आने दें। आज किसी रूठे हुए को मना लें, किसी की मदद कर दें, या बस आईने में देखकर खुद को एक प्यारी सी स्माइल दे दें, तो आपका मन खुश हो जाएगा।
0: बिल्कुल, जब मन खुश होगा तो ये जो खिड़की है ना, ये खुल जाएगी। और मन की खिड़की को हमेशा खुला रखना चाहिए,

0: क्योंकि क्या पता कब कौन सी ठंडी बयार जो है वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाए
1: और ये मन की मन रूपी जो पतंग है वो आसमान में लहलहाती उड़ने लग जाए।

0: सखियों, इंसान की असली ताकत भी यही मन है। अगर मन मजबूत होता है ना तो मुश्किल रास्ते भी बहुत आसान हो जाते हैं। और ऐसे मतलब बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई और उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़े। और एक उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा का, ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद भी इन्होंने मन से हार नहीं मानी और अपने कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी।
1: हाँ, ऐसी एक महिला और याद आ रही है मुझे आशा, जो सुधा चंद्रन, जो डांसर थी और उनका जो सपना था नृत्य करने का, क्लासिकल डांसर थी, लेकिन जिनका एक हादसे में पैर उन्होंने गंवा दिया, जयपुर फुट के सहारे वो फिर से खड़ी हुई और इतनी अच्छी नृत्यांगना बनी, सफल नृत्यांगना बनी वो। और इतना ही नहीं, वो सीरियल्स और टीवी में भी मतलब काम करती है काफी समय से। तो जो मन है ना, यदि थक जाए तो छोटी सी जो परेशानी होती है ना आशा, वो भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन मन को हारना नहीं होता, कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जीत और हार जो है ना, पहले हमारे मन में तय होती है। जिंदगी में कई बार सखियों ऐसा होता है कि सब कुछ खिलाफ लगता है, सारे रास्ते बंद दिखते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी कभी तो आईने में दिखने वाला चेहरा जो है ना, वो भी अजनबी लगता है। लेकिन याद रखिए, हार कभी बाहर से नहीं आती, सबसे पहले हमारे मन में जन्म लेती है।
0: और जिस दिन इंसान खुद से कह देते हैं ना कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन उसके कदम रुक जाते हैं। लेकिन जिसने ठान लिया, जिसने टूट कर भी मुस्कुराना सीख लिया, आगे बढ़ना सीख लिया, अंधेरों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है।
1: एक छोटा सा बच्चा है ना, देखो चलना सीखता है ना तो कितनी बार गिरता है वो।

0: लेकिन जब भी वो गिरता है तो फिर उठता है, वो हारता नहीं है, और फिर देखो ना एक दिन दौड़ने लगता है। तो हम बड़े होकर क्यों हार मान लेते हैं, हम अपनी किस्मत को क्यों मान लेते हैं, हम खुद से प्रयास करें।
1: यानी सबसे हमको सीखना चाहिए, हम बड़े हैं तो क्या हमको बच्चों से भी सीखना चाहिए। तो अगर मन मजबूत हो तो टूटी हुई उम्मीदें भी फिर से जुड़ जाती है, सूखी हुई शाखों पर भी नए पत्ते आ जाते हैं, और बंद दरवाजों के बीच कहीं ना कहीं एक खिड़की खुल जाती है जहां से बयार आती रहती ठंडी ठंडी हवा।
0: कहते हैं ना आशा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।

0: सखियों, मन जो है ना वो भागता रहता है और मन ही तो रिश्ते बनाता है। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये शब्द सुनते ही हमारे चेहरे के सामने बहुत से लोग आ जाते हैं। माँ का स्नेह, पिता का विश्वास, दोस्तों की मुस्कान और अपने किसी का साथ।
1: हाँ, लेकिन मधु, क्या आपने कभी महसूस किया है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, मन से जुड़े होते हैं? अगर मन साफ हो तो रिश्ते अपने आप खूबसूरत बन जाते हैं, वहाँ कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं होती। और अगर मन में दूरी आ जाए तो सबसे करीबी रिश्ता भी धीरे धीरे खामोश होने लग जाता है।
0: हाँ बिल्कुल आशा, कई बार क्या होता है कि रिश्तों को निभाने की हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन अपने मन की बात उनसे कह नहीं पाते। एक दूरी रहती है, कहीं अहंकार रुक लेता है और कभी ये डर होता है कि सामने वाला कहीं हमें गलत ना समझ ले।
1: तो बस यही जो रिश्तों की डोर होती है वो रिश्तों को कमजोर करने लगती है। तो सखियों, रिश्ते जो होते हैं कांच की तरह होते हैं। एक छोटी सी चोट, एक कड़वा शब्द या एक अनदेखी का पल, मतलब किसी को इग्नोर जब हम कर देते हैं तो दिल में ऐसी दरारें पड़ जाती है जिसे भरने में बहुत वक्त लग जाता है।
0: लेकिन एक सच ये भी है ना कि रिश्ते जो हैं वो सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते जो हैं वो एहसासों से बन जाते हैं। किसी का बिना कहे हाल पूछ लेना, भीड़ में हमारा उदास चेहरा उसको दिखाई दे जाना, और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत भीड़ में होते हैं और अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा दिख जाता है, उस वक्त कितनी खुशी होती है ना।
1: उस वक्त तो हमारा दिन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब मुश्किल वक्त में हम किसी की मदद करते हैं ना, तो यही छोटी छोटी बातें किसी भी रिश्ते को गहरा बना देती है। और कभी कभी प्यार जताने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, अपनेपन की एक आवाज ही काफी होती है।
0: बिल्कुल, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, इसमें लोग साथ तो हैं लेकिन दिलों के बीच कुछ दूरियां आ रही हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर हम घंटों बातें कर लेते हैं लेकिन घर में बैठे लोगों से बतियाने का हमारे पास समय नहीं बचा है।
1: ये तो बिल्कुल सच है मधु, आज का जो परिवेश है, हम सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। और कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ एक कदम जो है आगे बढ़ाना पड़ता है। जो साथ में बैठा है हमारे, उसके साथ चाय की चुस्कियाँ लेना, उसके साथ गपशप करना, चाहे मोबाइल स्क्रीन पर हम कितना भी इन्वॉल्व हों, लेकिन पास में जो बैठा है उस इंसान से जब हम जुड़ते हैं तो उसका मजा बिल्कुल अलग होता है।
0: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, हम सामने बैठते हैं तो पुरानी कोई बात होती है उसका जो गीला शिकवा है ना, कुछ एक सॉरी या एक मुस्कान में, थोड़ी सी बात करने में हल हो जाता है। अगर रिश्तों में मन जुड़ा हुआ नहीं होना सकियों तो खामोशियां बातें नहीं करती, और मन जुड़ जाता है ना आशा तो खामोशियां भी बोलने लगती हैं। कहते हैं ना कि आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं, और अगर मन दूर हो जाए तो हजारों शब्द भी मौन हो जाते हैं।
1: तो भाई, हम तो अपने प्रोग्राम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, चाहे आप कितने शौकीन हो, आप मोबाइल यूज करते हैं, बिल्कुल हम सभी यूज करते हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं उनको महसूस कीजिए, उनके साथ हंसिए, खेलिए, बोलिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे खूबसूरत वही लोग होते हैं जो हमारे मन को समझते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो हमारे परिवार के हैं, जो हमारे आसपास होते हैं।
0: और जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तभी हमारे मन में लगन रहती है उनसे मिलने की बार बार।

0: सखियों, मन की जो लगन है ना वो लगती है भावनाओं से, और ये जो भावना है ना ये एक ऐसा एहसास है जो हमारे मन में बसता है, भीतर की, हमारे जो भीतर एक मन की दुनिया है ना, ये शब्दों से एहसासों से बात करती है। कुछ बातें हैं ना जो होठों तक आकर रुक जाती हैं, कुछ एहसास कुछ दर्द आंखों में उतर आते हैं, और कुछ खुशियां होती है ना वो बिना वजह ही लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ ऐसे अनकहे एहसास होते हैं जो हर दिल में बसे होते हैं लेकिन उन्हें हम आशा बयां नहीं कर पाते।
1: और मतलब मन बड़ा अजीब होता है, ये हम सभी जानते हैं। कभी छोटी छोटी बात पर ही अपसेट हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है उस बात में अगर हम बाद में उस पर विचारते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े दुखों को भी इंसान मुस्कुराकर सह लेता है और मुस्कुराकर छुपा लेता है। और कई बार हम मैं ठीक हूँ कह तो देते हैं लेकिन हमारे मन में इतना तूफान होता है, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते।
0: हाँ, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम फोन पर बात करते हैं अपने परिजनों से तो पूछते हैं कि कैसे हो, तो हम कहते हैं ठीक है, भले ही हम ठीक नहीं होते लेकिन हम छुपा जाते क्योंकि जब दूर है तो हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। कभी किसी को ये भी सोचते हैं कि बुरा नहीं लग जाए, कभी सोचते हैं कि हमने अपना तकलीफ या दर्द बताया तो हम पर हंसेगा, तो हम अपने जो एहसास है ना वो किसी कोने में छुपा देते हैं। हम बहुत बोलना चाहते हैं लेकिन खामोशी ओढ़ लेते हैं।
1: लेकिन यही खामोशी, यही अनकही बातें धीरे धीरे इन बातों का मन पर बोझ बढ़ने लगता है। और जिंदगी की भाग दौड़ में हम भागते तो हैं, हम दूसरों को समझने में लगे रहते हैं लेकिन हम अपने मन को ही नहीं समझना चाहते हैं, अपने मन को ही नहीं सुनना चाहते हैं, उसकी आवाज़ हम सुनना भूल जाते हैं। कभी किसी अपने की कमी, कभी टूटते रिश्तों की टीस, तो कभी बिना वजह की बेचैनी, ये सब ऐसी बातें हैं जो अंदर ही अंदर हमें खाती रहती है और जो हमें परेशान करती है।
0: हाँ, लेकिन सखियो, मन सिर्फ दर्द ही नहीं संभालता, उम्मीद भी जगाता है। किसी अपने का साथ, एक प्यारी सी मुस्कान, या दुख और परेशानी के समय में किसी का बिना बोले कह देना कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये छोटे छोटे से एहसास जो है ना जिंदगी को रोशन करते हैं।
1: न जाने कितनी कहानियां छुपाए बैठा है मन अपने ही अंदर, और ये मन अपने आप से ही बातें करता है और फिर मन खुद को ही जवाब देता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए सखियों जरूरी है कि हम अपने मन को समय दें, यानी कुछ देर अपने मन के साथ बिताएं, अपनों की बातें सुनें, महसूस करें और कभी कभार एकांत में बैठकर खुद से भी

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मधु, हम सभी के अंदर एक कश्मकश हमेशा रहती है। एक तरफ तो हमारा एक चंचल मन है और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल लाइफ जिससे हम सब रोज गुजरते हैं। एक तरफ ये हमारा चंचल मन है जो तितली की तरह उड़ना चाहता है, आसमान को छूना चाहता है, अपने सपनों को जीना चाहता है और बिना सोचे समझे उन सपनों के पीछे भागना चाहता है।
1: लेकिन जैसे ये मन उड़ान भरने के लिए पंख फैलाता है नाशा, तो सामने क्या खड़ा होता है पता है? बदलता हुआ दौर, भागती हुई प्रैक्टिकल दुनिया जो कहती है कि ठहरो, पहले करियर देखो, बैंक बैलेंस बनाओ, और यदि ये सब नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे।
0: और कितना अजीब है ना, अपना मन तो कहता है चलो आज सब कुछ छोड़ कर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना लेते हैं, अपनी कहीं घूमने निकल जाते हैं, पहाड़ों पर निकल जाते हैं, या फिर कोई अधूरी पेंटिंग पूरी करते हैं जो सालों से अधूरी है। मन उड़ना चाहता है आजाद परिंदे की तरह।
1: लेकिन ये जो बदलता हुआ दौर है वो उड़ने कहाँ देता है? यह डिजिटल एज जहाँ चीज स्पीड और सक्सेस के पैमाने पर नापी जाती है, हमें उड़ने नहीं देती। हमें लगता है कि अगर हम जरा भी रुके ना तो इस रेस में कहीं पीछे छूट जाएंगे। हम नोटिफिकेशन, ईमेल्स और ईएमआई के पिंजरे में इस कदर कैद हैं कि हमारा जो चंचल मन है ना वो पिंजरे में कैद हो चुका है। हम जी नहीं रहे सखियों, हम बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं।
0: लेकिन मधु, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या इस बदलते दौर जो चल रहा है, क्या शर्तों पर जीना इतना जरूरी है कि हम अपने मन की करना ही भूल जाएं? माना कि पैर जमीन पर रखने हैं, जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन इस मन के लिए, इस मन की बातों को ढील देना भी तो जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: ताकि अपनी पसंद के कोई काम कर पाए तो हफ्ते में एक दिन या एक घंटा ही सही, इस बदलते दौर की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़िए, अपने मन को वो करने दीजिए जो ये चाहता है। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो सारी चीजें आपके दायरे में हो, क्योंकि मन उड़ेगा नहीं तब तक जिंदगी में नए रंग रंग कैसे आएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और सखियों, आप क्या सोचते हैं कि चंचल मन है ना वो कहीं उड़ना चाह रहा है यदि आपका, तो ये दौर आपको रोक रहा है तो थोड़ा दिल की सुनिए। फिलहाल आपके चंचल मन को एक छोटी सी उड़ान पर ले जाने के लिए बजाते हैं प्यारा सा गीत।

0: सखियों मन जो है ना वो कई बार अकेलेपन का शिकार भी होता है। हम अपने मन में सब लोगों के साथ बहुत घिरे हुए होते हैं, लेकिन जो हमारा जो मन होता है ना उसमें हम अकेले होते हैं, भीड़ में भी अकेले होते हैं। और इस अकेलेपन की जो वजह है ना वो होती है कि हम अपने मन की बात जो है लोगों से कह नहीं पाते, और जो हमारे मन का दर्द है वो किसी को दिखा नहीं पाते।
1: और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब इंसान अपने ही लोगों के बीच खुद को अनसुना अकेला महसूस करने लगता है। कभी किसी को वक्त ही नहीं मिलता, कोई मन की गहराई को समझ ही नहीं सकता, और फिर धीरे धीरे मन अपने ही भीतर सिमटने लगता है।
0: आज की जो दुनिया है ना इसमें रिश्ते बहुत हैं, लेकिन सुकून देने वाली बातें जो है वो कम हो गई हैं। मोबाइल में बहुत नंबर हैं आशा, लेकिन दिल खोलकर बात करने वाले जो इंसान है ना वो मुश्किल से मिलते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन भारी होता है लेकिन उस बात को सुनने वाला कोई नहीं होता।
1: और इसलिए वो सारा तूफान हम अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, और कभी कभी सोचते हैं कि इंसान इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कलाकार है। और इंसान तो है ही, और इंसान का मन उससे भी बड़ा बेहतरीन कलाकार है, क्योंकि वो अंदर से इतना जख्मी होता है, इतने दर्द, इतनी शिकायतें, और न जाने कितनी टूटी हुई उम्मीदों को वो समेटे होता है, फिर भी चेहरे पर, इन होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजी रहती है।
0: हाँ, अंदर जो है ना एक समंदर उतर रहा होता है, समुंदर की जो लहरें नहीं होती हैं उठती, उस तरह से हमारा जो दिल है वो रो रहा होता है, और बाहर हम दुनिया के साथ हंसकर हाथ मिला रहे होते हैं। कितना कमाल का हुनर है ना।
1: और कभी कभी ये मन जो है ना छोटे बच्चे की तरह रोता है और कहता है काश कोई हाल पूछ ले हमारा, क्योंकि मन अकेलापन जो उसको ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर अंधेरी रात की तरह अकेलापन जो है ना ये भी हमेशा नहीं रहता आशा। जरूरत है कि अपने मन की बात हम किसी से कह दें, खुद को थोड़ा वक्त दें, और ये समझें कि जो भावनाएं है ना वो मायने रखती हैं।
1: और मधु, इस जख्मी मन पर मुस्कुराहट का ये पर्दा डालना आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि हम हर बात किसी के आगे नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हमारी बात बड़ी हंसी खुशी सुन तो लेते हैं, लेकिन वो इस मन की जो जख्म है ना समय आने पर उस पर ही नमक छिड़कते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मरहम लगाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, जख्म पर जो नमक छिड़कने वाले हैं वो लोगों, और तमाशबीन जो होते हैं ना उनकी जो तादाद है वो आजकल बढ़ गई है। वो हर मोड़ पर खड़े मिलते हैं, जो आपकी तकलीफ तो सुन लेते हैं लेकिन पीछे पीछे मजाक बनाते हैं, मौका मिलते ही उस जख्म पर फिर से वार करते हैं। इसीलिए शायद अब जो लोग हैं वो मन खोल कर बात करना कम कर चुके हैं।
1: और इसलिए तो कहते हैं कि अपने जख्मों को छिपाकर मुस्कुराना कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी कोई तकलीफ हो है उसे खुदा के आगे या किसी बेहद खास भरोसेमंद इंसान के आगे ही रखिएगा, और जो सच में आपके आंसू पहुंचना जानता हो, बाकी दुनिया के लिए आपकी ये होठों पर मुस्कान आप जरूर पहन के रखिएगा, ताकि अपने जख्मों को अपनी ढाल बना सकें आप, अपनी कमजोरी नहीं।
0: सखियो एक बात और, कि ये तो हम अपने मन की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको दिखे कि कोई सामने वाला है, आपके आसपास जो व्यक्ति है

0: वो चुप है, वो चुप रहने लगा है, खामोशी ओढ़े हुए है, तो उसे समझने की आप भी कोशिश कीजिए कि कहीं उसका व्यवहार आपसे मदद तो नहीं मांग रहा। उसको समय दीजिए, उसकी आवाज़ सुनिए और उसकी बात को अपने तक रखिए और उसको मन से बेहतरीन सलाह दीजिए।
1: और मधु, जब हम आसपास लोगों से नहीं मिल रहे होते या लोग हमसे नहीं मिल रहे होते, हम अकेलापन महसूस करते हैं, तो वहीं से एक तनाव का दौर शुरू होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अकेलेपन और एकांत में बहुत फर्क है।
0: बिल्कुल,
1: एकांत में जब मन अपने आप से बातें करता है और धीरे धीरे उस परमात्मा से जुड़ता है, तो वो एकांत का मजा लेता है घंटों घंटों तक।
0: हाँ, और ऐसा ही मन जोगी बनता है।
1: हाँ।

0: आज की भागती दौड़ती जिंदगी की अपन बात कर रहे थे आशा, तो आज क्या है कि हर किसी को सफलता चाहिए, सबको पैसा चाहिए, किसी को पहचान चाहिए, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ खो रही है ना, तो वो है मन की शांति।
1: और शांति देता है हमें संगीत। और जब कभी हम सोकर उठते हैं, बाहर देखते हैं, कभी मौसम बहुत खुशनुमा होता है, तो ऐसे ही बिना सोचे समझे हमारा जो हाथ है वो म्यूज़िक सिस्टम की तरफ चला जाता है, चाहे मोबाइल की तरफ चला जाता है, और एक पुराना गज़ल नुमा गाना कभी हम बजा देते हैं। बस फिर क्या था, मन एकदम शांत और खुश हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, इस मन की शांति जो है ना, वो आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बाहर का जो शोर है ना, वो बहुत बढ़ गया है। हर समय हम जल्दबाजी में और चिंता में रहते हैं, और खुद को साबित करने की एक ऐसी दौड़ है ना, अंतहीन दौड़ कि पूछो ही मत, वो खत्म ही नहीं हो रही। इसलिए हम जो है वो संगीत का यदि सहारा लें तो ज्यादा बेहतर है।
1: और संगीत सुनने से मन एकदम शांत हो जाता है। मन और संगीत का रिश्ता आपस में बहुत गहरा है। सोचिए ना, हम जब खुश होते हैं तो कैसे, कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं तो हमारे पैर ऑटोमेटिक थिरकने लगते हैं, वॉल्यूम हम थोड़ा सा तेज कर देते हैं, और मन के अंदर बहुत बढ़िया वाला हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, जो हमारी खुशी को बढ़ा देता है।
0: हाँ, तो हमारा जो मन है ना, उसी को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए, लेकिन हम अक्सर उसको ही नजरअंदाज कर देते हैं। संगीत जो है वो हमारे मन का वो आईना है जो हमारी हर भावनाओं को बिना कुछ कहे पूरी दुनिया के सामने बयां कर देता है।
1: और संगीत, चाहे कोई अपने पसंद का सिंगर हो, है ना, चाहे सूफी अंदाज हो, चाहे आपके पसंद के कोई भी गाने हो, तो जब मन चिंताओं के भंवर में फंसा होता है, तो एक अच्छा गाना या आपकी पसंद के सिंगर का गाना आपके दिमाग का डोपामाइन नामक हैप्पी हार्मोन रिलीज कर देता है।
0: संगीत सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, थके हुए मन की एक थेरेपी भी है, उसकी दवा है। ये बहुत जरूरी है कि सीधे शब्दों में भी हम कह दें ना, तो संगीत जो है वो मन का भोजन है।
1: बिल्कुल, और यही भोजन हमारे मन को तरोताजा रखता है, खुश रखता है, संतुलित रखता है। तो अच्छे मन के लिए संगीत बहुत जरूरी है, क्योंकि संगीत से हमारा अटूट रिश्ता है।
0: एक और बात है कि संगीत जो है वो हमें भीतर तक जोड़ता है, मन के भीतर उतरने के लिए प्रेरित करता है। और जब हम अपने मन से बात करते हैं ना आशा, तो हमें बहुत सी चीजों का, समस्याओं का हल भी मिलता है। और कई बार हमारा मन कुछ बातें कहता भी है ना, जैसे कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन हमें पहले से ही पूर्वाभास करा देता है।
1: इंट्यूशन, मन के इंट्यूशन को कोई जो समझ लेता है, सीख लेता है, तो यानी कोई ना कोई अंदर हमारे मन के भीतर कोई हमें ट्यूशन दे रहा है, कोई समझा रहा है, कोई बात क्लिक करा रहा है, तो अगर उसकी बात हम सुन लेते हैं ना, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है।
0: तो मन की आवाज को सुनना भी जरूरी है सखी।

0: सखियों, समय हो चला है कि सुहाने सफर को समेटने का, क्योंकि जो वक्त है ना उसकी सुई कभी किसी के लिए रुकती नहीं है।
1: बिल्कुल, आज हमने मन के उन कोनों को छुआ जहां कभी खुशी की धूप होती है तो कभी यादों की ठंडी छांव। ये मन भी बड़ा अजीब है ना, कभी एक पल में पूरी दुनिया घुमाता है और कभी घर के एक शांत कोने में बैठकर सदियां बिता देता है।
0: हाँ, तभी तो किसी ने खूब कहा है कि इसलिए अपने छोटे से दिल और बड़े से मन का ख्याल रखिए, इसमें थोड़ी सी उम्मीद और ढेर सारी मोहब्बत हमेशा बचाए रखिए।
1: तो फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर इसी वक्त कुछ नई बातों और कुछ पुरानी यादों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम।
0: और चलते चलते सखियों, आपको बता दें कि आज हमारी आवाज और मधुर गीतों को आप तक पहुंचाया कंसोल पर हमारे साथी कल्याण विश्नोई ने, और ट्रांसमीटर पर हमारे साथी रहे विक्रम सिंह भाटी और फारूक अहमद शेख। कंट्रोल रूम से हमारे साथ रहे राय सिंह राव। FM पर CL सोनी।
1: और पूरे मन से इस प्रोग्राम की परिकल्पना की सफलता चारण ने। तो अब अपनी रेडियो सखी आशा अडवाणी और
0: मधु बनर्जी को
1: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नारी वाटिका। हम आकाशवाणी के जोधपुर चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से।
2: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
3: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
2: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
4: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण

0: पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुँचने वाले है, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में है। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत है और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीति

0: नैतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझकर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
2: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @SIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले तीन दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगने में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आँच

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, वो हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर, जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
2: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल
2: है ना।
1: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
2: ख्याल रखने वाला
1: जी।
2: है ना। विषय बता दे।
1: चलिए
2: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। हाँ। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे। वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
2: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे।
1: आंखों से डर जाते थे।
2: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी की आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं। है
2: सचमुच
1: जगमगाते हुए
2: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
1: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है। जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
2: और
1: हम
2: उसको कचोटते रहता है
1: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया। मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके कहीं हम वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम

0: बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
1: अगर कि
0: बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए, और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक गांव है रोबरखेड़ा वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
2: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
2: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है
2: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
2: योग्यता
1: है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून जोश जो आपका रहता है ना कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है मात्र शक्ति पता नहीं क्या है उसमें क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
2: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद अब क्या इरादा है?
2: मुझे ऐसा लगता है एक गीत सुन लिया जाए।
1: चलो

0: ना धीरे धीरे मचल और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के मुंह से।
0: वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल। और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आंख का तारा कहते हैं, और हर माँ की आंख का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आंख का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात,
0: क्या
1: है?
0: बात है,
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है, इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है, वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं, फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ की आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद कितनी मिलती है ना।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल सही
1: कहा। तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं,
1: वैसे ही बने होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: माँ हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त, और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम, जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर या

0: ना हो इस दुनिया में, हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है आज है उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा, और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े? और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से

0: बचना जरूरी है। खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और संदेश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरे दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: का तारा होते ना बच्चे।
0: इसीलिए
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था। पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपने परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट, तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता। मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं,

0: पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब, तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: और तो गाना सुन ले
0: चलिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सुन लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा

शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती है मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: सोनाली, तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम

0: है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया हम तो इतना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाएं।
1: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए हैं, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
0: एक गाना सुन के
1: चलो।

0: सब है।
1: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
2: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
2: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें तो फिल्म

0: मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में टेंजानिया में और बचपन से ही पिताजी को संगीत का घर में संगीत का माहौल था ऐसे समझ लीजिए. मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी. हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना बहुत छोटी थी मैं एक लगाव नहीं था. तो वो कहते हैं ना वो माहौल तो बचपन से ही मिला था. और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो जबरदस्ती क्योंकि सीखा नहीं था कुछ सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था. तो ऐसे गाती थी और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई. लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई.
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से
0: जी, जी.
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की वो तो आपको घर में मिली.
0: घर में ही मिली, बिल्कुल सही.
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ.
0: जी,
1: अच्छा
0: जी.
1: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए
0: जी.
1: तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं. तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
0: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में एक किस्म से आना. तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था कल्याण जी आनंद जी नाइट. और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था तो मेट्रो तक कहते ना गाड़ियों की और लोगों की उस जमाने में क्यू थी. उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया.
1: अच्छा,
0: और लता जी भी वहां थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया. एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर. मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी. और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भी आ गए डेट लेने के लिए. और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो ये ड्यूएट गाना है. आप यकीन माने वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया. दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया. फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ.
1: वाह वाह भाई, ऐसा
0: कहाँ से कहाँ ये बात देखिए.
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है. तो क्यों ना हम ये गाना.
0: ये तो आप सब लोगों का प्यार है लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा. और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई.
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें.
0: सुनाइए.
2: दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रहे थे और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बनाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं।
1: जी, जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी, अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं, कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो एक भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। और जो गाने वाले थे वो भी, अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: हाँ,
1: वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी, क्योंकि

0: माहौल ही ऐसा था
1: जी, इतना पेशेंस थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
0: जो इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल, हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
1: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
0: जी जी।
1: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है एक गाने के बारे में बताया है।
0: जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराए, और रिहर्सल होता था, बकायदा होता था।
1: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
0: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादियों मां मान जाओ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ। भाई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए, उनको है कि नहीं।
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ

0: में गए थे, तो मैंने ऐसे रास्ते मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ. मैंने कहा देख मुझे मंडी जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है. तो कहती थे सर कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं. तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं. मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे. कहने लगे नहीं चलते मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी. यकीन मानो मेरे साथ आई, जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं. अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार. और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत तुम. तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ. फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है. बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है.
1: और आपकी ये दोस्ती
0: अभी भी कायम है?
1: अच्छा।
0: जी हाँ.
1: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
0: बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी. बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं. मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है.
1: कमल जी मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती
0: जी,
1: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए.
0: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी पंजाबी. और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला.
1: अच्छा
0: जी हाँ. फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था. और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली. अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इसे इतना मशहूर हुआ था ये गाना.
1: लेकिन एक चीज है
0: जी,
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है. अच्छा वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
0: रस शुक्रिया
1: हमेशा घुलेगी. कमल जी ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है. आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार के ला सके. और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है. और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है.
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती
0: थी? शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी. तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो. तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए. उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई. उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गजलों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में. तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए. तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे. तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई और इन ये सब. और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब. तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है. मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे गाना होने वाला है फिल्म बादशाह का. गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी.
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था. तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त

0: तैयार रहो. हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था. वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है. और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूंगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी.
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा है कि पूछ ही लेना चाहिए. वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपए मिलते थे. उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे, तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे. और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो मैं, हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना. हम उससे, हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए. आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्पत के गाना अच्छा मिले.
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं सोचता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी की मन में इस किस्म की चीज होती है. तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं.
1: अच्छा
0: जी.
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमनी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते हैं ना, टॉप पे रहा काफी दिनों तक. और यही नहीं, जहां भी मैं गई, मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना. जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है.
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए.

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में रेडियो पे सुनते थे,
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं सैगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है, और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है ये?
1: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा रहा है?
1: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है, कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी,
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं। और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हटकर के हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कोशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कुंवर बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ती थी, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ

0: कमल बारूद जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहते। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा छिजी मैंने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उनपे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने,
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म को रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने

0: शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं, तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
1: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
0: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहां बात लेजर और सब पहुंच गई है, हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहां पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहां आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का, और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
1: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
0: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहां रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
1: और ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
0: जी,
1: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना आप। और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं, अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
0: जी,
1: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी, बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने, पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूंगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार, उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए, और बोल है निगाहें नीची किए।

0: शर्मा जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं। तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में,
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार एस सलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगे, कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हूँ?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्यूलॉयड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिकराव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम की 5 बज चुके हैं। अब आप सुनने वाले हैं कार्यक्रम युव वाणी।

0: जी हाँ दोस्तों, इस धूप भरी दिन में एक ठंडी सी ठंडक लेकर और प्यारे प्यारे सी प्लेलिस्ट लेकर हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़ चुके हैं। मैं हूँ आपके आज के रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता, और मेरे साथ हैं
1: इस आवाज का नाम राहुल। और आज की शाम वाकई बड़ी स्पेशल है। हर शाम की तरह मंगलवार का दिन है और यूथ अंताक्षरी का जो दिन है, अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यूथ अंताक्षरी में आज के दिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस आवाज़ का नाम राहुल। आज प्रोग्राम में बहुत कुछ खास, बहुत सारी बातें और एक खास बातचीत भी आपके लिए कुछ ही देर में हाजिर होगी। यूथ अंताक्षरी में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं,
0: बताएंगे क्यों ना पहले ये गाना सुन लिया
1: बिल्कुल
0: जाए।
1: सुनेंगे साहब, पहले गाना सुनेंगे फिर बताएंगे।

0: दोस्तों, आज के जो पहले हमारे कॉलर हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं और इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ
1: हेलो,
0: जी नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम रणवीर सिंह तारण गांव बिरई से।
0: रणवीर सिंह जी, क्या करते हैं आप?
1: पढ़ाई
0: ओके, पढ़ाई कर रहे हैं आप। अच्छा रणवीर सिंह जी, सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप में, झलक रहा है। तो सबसे पहले जो आप है एक गाना सुना दीजिए अपनी पसंद का, बॉलीवुड होना चाहिए।
1: ठीक
0: सुनाइए।
1: संदेशी आते हैं हमें तड़पाते हो, चिट्ठी आती है

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस गाने को गुनगुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूथ अंताक्षरी में पार्टिसिपेट किया। अगली बार फिर से हमारे साथ जुड़िएगा, और अगर आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं।
1: जी हाँ, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 02912553300, दूसरे नंबर है 02912554300।
0: और हमारे साथ इस कड़ी में अगले कॉलर भी फिलहाल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? 02915153 02915153 पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और अगले कॉलर भी फिलहाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एनीवेज, म्यूजिकल ट्रैक एंजॉय करेंगे और कनेक्ट रहिए हमारे साथ। यूथ अंताक्षरी फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है, एंजॉय दिस ट्रैक।

0: जी हाँ, अगले कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: नमस्कार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
0: हेलो
1: हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए जी, फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे, मज़ेदार से गाने को एंजॉय करेंगे। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं 02915235300 पर, 02915235300 पर। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: बात है,
1: है।
0: प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के बीच ही अगले लिसनर जुड़ चुके हैं। हेलो
1: जी
0: हेलो,
1: नमस्कार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो
0: हेलो।

वेलकम बैक एक बार फिर से। इस वक्त प्रोग्राम यूमाने को एंजॉय कर रहे हैं आप। हमारे कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, नमस्कार। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?

0: क्या बात है, इतना प्यारा म्यूजिकल ट्रैक सुना हम सभी ने. और अभी चल रहा है अंताक्षरी का माहौल. राहुल, तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लिसनर्स है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और उनको करना है एक छोटा सा काम, वो है कि एक नंबर डायल करना. और वो नंबर क्या है राहुल?
1: वो नंबर है 02915253300 और दूसरा नंबर है 02915253300।
0: तो जो भी हमारे लिसनर हैं, जो सुन रहे हैं, हमें गाने का शौक रखते हैं, 30 साल की उम्र से कम है, तो फिर जल्दी से जल्दी हमसे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि हम बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं.
1: यूथ अंताक्षरी फिलहाल चल रहा है और मज़ेदार से गाने, मज़ेदार सी बातें और एक ख़ास बातचीत का जिक्र भी कुछ ही देर में अब से होने वाला है। तो हमारे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। फिलहाल के लिए म्यूजिकल ट्रैक की दुनिया में बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं अगला म्यूजिकल ट्रैक।

बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक के बीच हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। अगले कॉलर फिर से हमारे साथ बने हुए हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एनीवेज म्यूजिकल ट्रैक चलता रहेगा और कनेक्ट होने के लिए नंबर है 02915530, 02915530।

0: और जिन लोगों को ये जो अपनी एयर कंडीशन एसी को घर में 18 डिग्री पर रखने का शुरू रहना, वो भैया वो थोड़ा कम कर दो, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर आप अपनी एसी का रखोगे और आपका जो जेब का खर्चा है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम यमन को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त विनीता।
0: सरकार और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक आप जो हैं वो एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पर चलाना ही सही माना जाता है। बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कहती है कि भैया आप जितना कम टेम्परेचर अपनी एसी का रखेंगे आपका जेब का खर्च उतना बढ़ता चला जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से आपकी जो है वो बिजली की बचत 6% तक बढ़ जाती है।
1: क्या
0: तो
1: बात है।
0: फिलहाल ध्यान रखिए एक एवरेज टेम्परेचर होता है अपनी एसी का, आप 24 डिग्री सेल्सियस तक
1: और
0: के लिए
1: वैसे
0: रखें।
1: इसमें बुराई भी नहीं है राहुल।
0: बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। फिलहाल प्रोग्राम यूवाणी चल रहा है, अंताक्षरी प्रोग्राम है और यूथ अंताक्षरी में हमारे नंबर हैं 0291-2553-300, 0291-2554-300 पर आप हमसे जुड़ सकते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमारे दोस्तों ने जिन्होंने भी 10वीं पास की है अभी अभी, और वो जो है सरकारी नौकरी के लिए तलाश रहे हैं, सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मौका है। जी हाँ, रेलवे में निकली है टेक्नीशियन के 6,500 पदों पर भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड RBI ने टेक्नीशियन के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।
1: जी हाँ बिल्कुल, इसमें टेक्नीशियन Grade 1 और Grade 3 के लिए कुल 6,565 रिक्त पदों पर भर्ती होगी, और टेक्नीशियन Grade 1 सिग्नल के लिए BSc या डिप्लोमा होना आपके पास अनिवार्य होगा, वो है तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जबकि टेक्नीशियन Grade 3 के लिए 10वीं पास के साथ साथ आपके पास ITI होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो 10वीं पास और जिन्होंने ITI कर रखी है, BSc या डिप्लोमा किया हुआ है, तो इनके लिए भर्ती बड़ी ही शानदार होने वाली है। अगर इस भर्ती के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in पर जाकर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। फिलहाल के लिए प्रोग्राम में बढ़ेंगे, आगे सुनेंगे मजेदार से गाने और एंजॉय दिस नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पैगाम न ले पर ये मत कहना, अरे ओ पगली, तुझ देखने में मेरे नाम न ले, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तू बोले तो बढ़ जाऊं मैं बुले सस्तो, तुम्हारी मैं भी नाचूं, मैं भी नाचूं रे गाऊं, सोने यार तू चलिया तेरी राह, मैं भी नाचूं रे गाऊं, सोने यार तू चलिया तेरी राह भुलिया।
2: अरे वाह, बहुत खूबसूरत गाना आपने गाया। आपको पता है गाना किसने गाया है?
1: नहीं
2: पता? अरे वाह, कोई नहीं, हमारे साथ जो है वो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूं अंताक्षरी में अगले कॉलर फिलहाल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो
3: हेलो
2: हेलो, क्या आप हमारे सुन पा रहे हैं?
3: हेलो
4: हेलो,
2: हाँ सर, क्या नाम है आपका?
4: दीपक जी।
2: क्या नाम है सर?
4: दीपक जी।
2: क्या करते हैं आप? अरे वाह, गाने का शौक कब से रखते हैं?
4: है?
2: गाने का शौक कब से रखते हैं? गाना गुनगुनाते हैं?
4: मैं आप बाकी बोल रहा हूँ, सही नहीं आ रहे।
2: हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
4: हेलो भैया।
2: हाँ जी,
4: आवाज सही नहीं आ रही, वापिस से फोन लगा रहा हूँ।
2: हाँ जी, लगाइए लगाइए।

0: श्रोताओं, आप सुनेंगे अंडर 15 एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त खुशी राणा से राहुल की बातचीत।
1: कुछ करने की जिद और हौसला इतना कि माउंट एवरेस्ट भी उसकी उपलब्धि का सम्मान करे। छोटे से शहर से निकलकर विदेश में अपने देश का परचम लहराया, वाकई ये कोई मामूली बात नहीं है। और ऐसा करने वाली खुशी राणा जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वाली खुशी राणा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। खुशी, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए।
2: मेरा नाम खुशी है। मैं बॉक्सिंग मैंने 2020 में स्टार्ट की थी। मुझे पहली बार बॉक्सिंग मेरे भाई ने घर पे सिखाया था, 1-2 मारना। फिर मैं अपने भाई के साथ ग्राउंड गई, फिर मैंने वहाँ पे विनोद आचार्य सर, मेरे जो कोच है, उन्होंने भी बहुत कुछ मुझे आगे के लिए बहुत सपोर्ट किया, बहुत सिखाया। और पापा है, जो इतना मिडिल क्लास फैमिली है, बट पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बॉक्सिंग को लेके। ऐसा नहीं था कि लड़की है नहीं होगा ये, पापा ने भी कहा नहीं तू करेगी बस।
1: क्या बात है, मतलब सबका सपोर्ट था और उसकी बदौलत उसका नतीजा आप और हम सब यानी पूरा देश देख रहा है। सबसे पहला सवाल बातचीत में शुरू करूंगा, मैं पूछना चाहूंगा कि जब पूरे देश ने आपको पहचाना कि यार ये भारत की बेटी, राजस्थान की बेटी, इतना बड़ा मोमेंट है, आपको क्या फील हुआ?
2: उस टाइम मुझे एक ड्रीम सा लग रहा था कि ऐसा फील नहीं हुआ कि ये रियलिटी हो सकती है कभी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था।
1: सपना सा लग रहा था।
2: सपना सा लग रहा था।
1: मेडल जब गले में आया, पहला चेहरा किसका विजुअलाइज हो रहा था?
2: पहला पेरेंट्स का।
1: पेरेंट्स का? उनके चेहरे पर किस लेवल की खुशी होगी, वो
2: हाँ।
1: क्या सोच रहे होंगे? वो उस वक्त आपके साथ थोड़ी थे पेरेंट्स,
2: नहीं
1: वो घर पे थे। आपके साथ कौन था?
2: हाँ, मेरे साथ ऐसे फैमिली से तो कोई नहीं था, ना कोच सर थे, क्योंकि हमें जो इंडियन टीम गई थी वो कोचेस थे हमारे साथ बॉक्सिंग की।
1: ओके, बॉक्सिंग में आने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली?
2: मेरे भाई से, महेंद्र राणा मेरा भाई है, उससे मिली थी मुझे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो कैसे शुरू हुआ सफर? स्कूलिंग आपकी चल रही है अभी,
2: हाँ।
1: और इस दौरान बॉक्सिंग से आप कनेक्ट कैसे हुए, कैसे जुड़े आप वहाँ से?
2: बॉक्सिंग मेरा बड़ा भाई है, वो करता है।
1: ठीक है।
2: तो पहले मैं स्कूल में भी गली में भी बहुत खेलती थी। तो ऐसे ही एक दिन, मैं सैटरडे था, मैंने कहा चली जाती हूँ ग्राउंड। तो मैं एक पहले पहले दिन गई, बट मुझे अच्छा लगा जाके, तो फिर मैंने कहा कि मैं भी बॉक्सिंग करूँगी।
1: कब की बात है ये?
2: ये लॉकडाउन खुलने के बाद की बात है ये,
1: अच्छा।
2: तब से मैंने।
1: लोग ना बॉक्सिंग को ऐसे मानते हैं कि ये ताकत का गेम है, इसमें पावर चाहिए। असली बॉक्सिंग क्या है आपके नजर?

0: से, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं?
1: ताकतवर है बट ज्यादा स्मार्ट वर्क, अब ज्यादा स्मार्ट हो गया है
0: मॉडर्न
1: बॉक्सिंग,
0: बॉक्सिंग.
1: मॉडर्न बॉक्सिंग हो गई है।
0: सही सही सही. पहली बार जब रिंग में उतरे थे, क्या फीलिंग थी वो? क्या डर था कुछ भी, यार मेरे कहीं पंच पड़ गया तो क्या
1: पहली
0: होगा यार?
1: बार तो बहुत डर था, क्या पता मैं हार गई तो,
0: हार का डर था.
1: हार का डर था।
0: पहला पंच याद है?
1: एक बार याद है जब मेरी लड़के के साथ कराई थी, तो उसने मुझे स्लिप राइट मारा था, तब एक बार पूरा मुंह हिल गया था मेरा यही बारे में
0: एक ही बार पूरा मुंह हिला दिया उसने. फिर आपको गुस्सा नहीं आया? अब मैं पूरा अच्छे से ट्रेनिंग करूंगी
1: गुस्सा
0: और उसको
1: आया
0: पंच
1: ऐसा था कि
0: लगाऊंगी,
1: हाँ मारूंगी इसको।
0: इसको मारूंगी
1: हाँ
0: अब. क्या बात है. ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान इस बॉक्सिंग में सबसे मुश्किल चीज क्या
1: मुश्किल, बस मुझे दौड़ना ही पसंद नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छे लगते
0: है? अच्छा, बॉक्सिंग में सबसे पहले अपने शरीर को प्रिपेयर करना पड़ता है, बॉडी को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए रनिंग करनी पड़ती है पहले.
1: हाँ वार्म
0: बॉक्सिंग
1: अप
0: करने
1: करना
0: से पहले वार्म
1: पड़ेगा।
0: अप के तौर पर आपको रनिंग करनी पड़ती है, और वो थोड़ा आपको
1: नहीं
0: मुश्किल लगता
1: ऐसे
0: है.
1: वार्म अप मुश्किल नहीं लगता, जैसे अगर हमारे ट्रेनिंग के बीच में रनिंग होती है स्प्रिंट वगैरह, वो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, बट जब करने लगती हूँ तब मजा आता है उसमें, जब खुद का जब बेस्ट दे रही होती हूँ तब।
0: अब बात करते हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स भी होंगे बहुत सारे, ठीक
1: हाँ
0: है, और वो जब आउटसाइड बहुत सारी पार्टीज करते हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं, लेकिन आप जो हैं ऑब्वियस है इस लेवल पर पहुंची हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ती होगी. अब फ्रेंड्स आपकी पार्टी कर रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस में बिजी हैं, तो वो मिसिंग आउट नहीं फील होता? यार मैं इन बच्चों से थोड़ा अलग हूँ, मतलब वो क्या फीलिंग है?
1: होता है कभी कभी, बहुत फील होता है कि बोरिंग स्पोर्ट्स की एक थोड़ी बोरिंग सी लाइफ है, रोज ट्रेनिंग रेस्ट ट्रेनिंग रेस्ट, और फिर जब मेडल आता है तो वो अलग ही खुशी होती है कि अब पार्टी करूंगी
0: उन सबसे बड़ी पार्टी
1: बड़ी
0: करूंगी.
1: पार्टी करूंगी।
0: क्या बात है. मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बॉक्सिंग और पढ़ाई कैसे बैलेंस होता है, ये कैसे?
1: बैलेंस बैलेंस तो नहीं होता, लेकिन ठीक है मैं ट्रेनिंग करती हूँ और पढ़ाई पूरे दिन में ऐसे तो रेगुलरली तो नहीं पढ़ती, लेकिन एग्जाम टाइम पढ़ती हूँ ऐसे टाइम कम मिलता, बट दिन में 1 घंटा पढ़ लेती हूँ बस।
0: किसी भी चीज के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारी, हर चीज को टाइम लगता है. इस फेज में आपको कभी ऐसा लगा यार अब नहीं हो पाएगा, इतनी प्रैक्टिस कर ली अभी भी नहीं हो रहा है, मतलब क्या चाहिए, और ऐसा कुछ ऐसा मोमेंट आया कभी?
1: ऐसा मोमेंट आया नहीं, क्योंकि मैंने खेलना ही लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था बॉक्सिंग, मतलब जब मेरी एज हुई थी, तब एक ऐसा मोमेंट था कि मैं जीती हुई बाउट भी हार गई थी, तो मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि, तो उस टाइम मेरे अंदर गुस्सा था, मतलब ऐसा नहीं था कि अब नहीं हो पाएगा, मतलब मैंने ऐसा था सोचा कि इस साल नहीं तो अगले साल तो पक्का करूंगी, तो मैंने इस साल किया।
0: एशियन चैंपियनशिप में जब आपने भारत की जर्सी वियर की, वो प्राउड मोमेंट कैसा था?
1: उसका बहुत वेट था, बहुत टाइम से जो एक वो ड्रीम होता है प्लेयर का इंडियन जर्सी पहनने के इंडिया की, बहुत अच्छा मोमेंट था उसको, मैं अभी तक कभी भूल नहीं सकती उसको।
0: एक आप जो हैं अपने रिंग में अपने देश में उतरते हैं, वहां अपने देशवासियों के साथ ही आप खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक जब आप विदेश में जाकर वहां आप बॉक्सिंग रिंग में उतरे, वो प्रेशर कैसा था?
1: प्रेशर नहीं, मेरा पहला एशियन था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी पहली फाइट की, कि मुझे इंडिया किट पहनना है, पीछे मेरा नाम लिख रखा है, मुझे जाना है रिंग में, बहुत एक्साइटमेंट थी, वो डर नहीं था बिल्कुल भी, ना कुछ प्रेशर था।
0: इस पूरी चैंपियनशिप में सबसे टफ मुकाबला आपका किसके साथ रहा?
1: टफ तो नहीं कह सकती, लेकिन नॉर्मली उज्बेकिस्तान के साथ था मेरा, जहाँ जिस जिस बाउट में मैं लॉस हो गई थी, उस बाउट
0: तो उससे आपने क्या कुछ सीखा? आपने वहाँ
1: सीखा मैंने उस बाउट से।
0: क्या सीखा, क्या मोमेंट्स आपने वो वहाँ पे लिखे हैं? आप यार ये इसने यही चीज़ की है, इससे मैं पीछे हो गई थोड़ी सी, मुझे अब इस गलती को सुधारना है.
1: मैंने पंच मार के, जैसे बॉक्सिंग में होता है पंच मार के, मैंने अपने माइंड का यूज नहीं किया उस फाइट के अंदर।
0: मैच से पहले आपका माइंडसेट क्या होता है, क्या सोचते
1: मैच
0: हो?
1: से पहले ऐसे मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मैं रिंग के अंदर जाके ही सोचती हूँ जो भी कुछ करना है, बट ऐसा होता है सोचती हूँ कि हाँ जीत के तो आना है।
0: देखो कोई भी स्पोर्ट्स होता है ना, तो हर प्लेयर की एक आदत होती है, एक हैबिट होती है, कोई लकी चार्म होता है किसी का, किसी का कोई लकी रिचुअल होता है. आप क्या करते थे मैच से पहले? आपकी कोई ऐसी, कोई ऐसा कुछ होता था यार, ऐसे क्या क्या होता था रिंग में उतरने से पहले, कोई लकी रिचुअल या फिर कोई ऐसी हैबिट?
1: हाँ मेरे दाता श्री है, उनका नाम लेके जाती हूँ हमेशा बस।
0: मेडल जीतने के बाद सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा आपको?
1: इमोशनल की ऐसा था कि गोल्ड नहीं आया था उसका था बहुत।
0: जब विदेश में आप परफॉर्म करते हो, रिंग में उतरते हो, ऐसे में जब नेशनल एंथम कानों में आता है, क्या महसूस होता है
1: वो फीलिंग बहुत

0: बता नहीं सकती।
1: मतलब अपने देश के लिए वहां उतरना, रिप्रेजेंट करना, वो अपने आप में एक अलग फीलिंग है, वो बयां ही नहीं किए जा सकते। एक बॉक्सर के लिए मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है?
0: बहुत ज्यादा, क्योंकि आप फिजिकली प्रिपेयर होगे, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे तो आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे रिंग के अंदर। आपको मेंटली जितना फिजिकली प्रिपेयर उतना ही, उससे ज्यादा मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है।
1: हम जब किसी भी चीज से हारते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने हार से क्या सीखा अब तक?
0: मैंने सीखा कि जो भी मैं भी थोड़ा मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं थी, तो मैंने उस पे मैंने अपनी गलतियाँ, बहुत सी गलतियाँ भी देखी और सोचा है कि नेक्स्ट टाइम वो गलती वापस कभी नहीं होगी। और मैंने अपनी उस हार से बहुत कुछ सीखा कि मेंटली प्रिपेयर रहना, किस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना।
1: देखो, आजकल की जो लड़कियां हैं, अगर वो इस खेल में आना चाहती हैं, बॉक्सिंग शुरू करना चाहती, खेलना चाहती हैं, देश के लिए खेलना चाहती हैं, उनके लिए क्या कुछ क्या बताना चाहेंगी आप?
0: चाहती हूँ कि लड़कियाँ थोड़ा घर से बाहर निकले, वैसे अब तो जनरेशन चेंज हो गई है, सब भी खेलती है। चाहती हूँ कि और अच्छा वो करे, मेडल लेके आए, भारत का नाम और ऊपर करे वो।
1: उन पेरेंट्स को या बोलेंगी उन लड़कियों के पेरेंट्स को?
0: उन्हें बोलना चाहूँगी कि उन्हें ट्रेनिंग कराए, उन्हें सपोर्ट करे। मेन सपोर्ट होता है, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो कुछ भी कर सकते हो आप।
1: आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना?
0: मेरा सपना ओलंपिक मेडल और वर्ल्ड चैंपियन बनना है। पहला तो वर्ल्ड चैंपियन है।
1: ये सपना कब डिसाइड हुआ?
0: जब मैं बॉक्सिंग में मतलब आई थी तब ओलंपिक का नहीं था, लेकिन ऐसा था कि एक बार वर्ल्ड चैंपियन का बेल्ट लेना है, इसलिए
1: ओलंपिक का कब डिसाइड हुआ?
0: ओलंपिक का तो है ही, बॉक्सिंग में आते ही ऐसा था, अब ओलंपिक तो खेल नहीं है।
1: सबके ना अपने अपने रोल मॉडल होते हैं। आपका रोल मॉडल?
0: बॉक्सिंग में फ्लॉयड मेवेदर।
1: क्या बात है। अगर वो इस टॉक को सुन रहे हैं, बातचीत को सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी?
0: बात करें
1: क्या उनसे, उनको कुछ बताना चाहेंगी, कुछ बोलना चाहेंगी उनको?
0: हाँ, उनके गेम को मैं देख के बहुत इंस्पायर हुई, उनसे बहुत कुछ, उनको देख के मेरा भाई मुझे सिखाता भी है कुछ कुछ चीज़ें, उसमें से रील या उनकी यूट्यूब पे वीडियो फाइट की देख के।
1: रिंग के अंदर तो खुशी मतलब एक अट्रैक्टिव गेम में होती है, रिंग के बाहर की खुशी क्या है?
0: मस्त
1: मस्त। बॉक्सिंग के अलावा और कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं आप?
0: स्विमिंग,
1: स्विमिंग आती है आपको? कब
0: हाँ
1: सीखी है आपने?
0: स्कूल में सीखी थी।
1: स्कूल में सीखी थी। अरे वाह। और ऐसा खाना, मतलब एक प्लेयर के लिए ना एक बहुत फिक्स डाइट होती है, मतलब आप भी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, ऐसी फिक्स डाइट होती है कि भाई यार मुझे ये खाना है, चीट मिल के आपके लिए?
0: वॉफल,
1: वफ़ल? वफ़ल खाना अच्छा लगता है, कभी कभी खा लेते हो
0: हाँ
1: है ना?
0: सैटरडे संडे
1: सैटरडे संडे।
0: जब
1: अच्छा,
0: कंपटीशन नहीं हो तब।
1: मम्मी के हाथ की फेवरेट डिश?
0: मम्मी याद की भिंडी की सब्जी।
1: अरे वाह यार, भिंडी की कुरकुरी, भिंडी की सब्जी, क्या बात है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, अगर बॉक्सर नहीं होती आप तो क्या होती?
0: बॉक्सर नहीं होती तो कुछ सोचा ही नहीं था, जब बड़ी हुई तभी बॉक्सिंग डाल दिया।
1: के बड़ा होने ही नहीं दिया, उससे पहले बॉक्सिंग में आ गई। ओके खुशी, प्रोग्राम यूवान इस वक्त चल रहा है और हमारे साथ अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वाली खुशी हमारे साथ है और बातचीत चल रही है। खुशी, एक रैपिड फायर होगा छोटा सा, आपको इंस्टेंट जवाब देना है, और रैपिड फायर कुछ ऐसा है कि चाय या फिर कॉफी,
0: कॉफी,
1: अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग या फिर इवनिंग वाली ट्रेनिंग,
0: अर्ली मॉर्निंग,
1: मेडल या वेकेशन,
0: मेडल,
1: पावर पंच या फिर स्मार्ट पंच,
0: स्मार्ट पंच,
1: मोबाइल या फिर सोना?
0: सोना,
1: सोना। सॉरी, फेवरेट बॉक्सर,
0: फ्लॉयड मेवेदर,
1: फेवरेट एक्टर,
0: फेवरेट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा।
1: फेवरेट प्लेस,
0: रिंग, बॉक्सिंग रिंग अच्छी लगती है,
1: सपना क्या है?
0: वर्ल्ड चैंपियन।
1: क्या बात है। प्रोग्राम यूमणि को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं और खुशी हमारे साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतने भी लिसनर आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि भाई जो बॉक्सिंग में आना चाहता है वो किस तरह से आ सकता है?
0: आप बॉक्सिंग में आओ, सीखो पहले, बट हर चीज़ में समय और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको आगे बढ़ना है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि खेले, सब अच्छा मेडल लाए, परफॉर्म करे, भारत के लिए मेडल लाके दे वो।
1: और ये जो चैंपियनशिप है, चाहे कैसी हो, बॉक्सिंग हो या और भी दूसरे फील्ड में, ये आपको सरकारी नौकरी लगने में कितनी क्या कुछ सहायक है, इस बारे में आपको क्या बताएगा और आप क्या बताना चाहेंगी?
0: बहुत है, क्योंकि राजस्थान सरकार तो बहुत देती है अब तो, बहुत सपोर्ट भी करती है, नेशनल मेडल पे जॉब देती है वो, और भी बहुत सारी जॉब

0: मिलती है नेशनल मेडल्स पे।
1: आपको सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी गई इस दौरान, इस पूरी जर्नी में, चैंपियनशिप के दौरान मानिए या प्रैक्टिस के दौरान लगाई जाए तो?
0: हम खेलने गए, उनका टिकेट्स वगैरह, हम वहाँ पे रहे, सब कुछ गवर्नमेंट ने किया। वहाँ से वापस आना, घर तक के टिकेट वगैरह सब। मैं वहाँ पे रहे तो इंडियन फूड तो मिलता नहीं है अच्छा, तब भी उन्होंने अवेलेबल करवाया।
1: वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है, आप जब विदेश पहुँचे

0: से आप जब विदेश पहुंचे तो क्या कुछ अलग आपने महसूस किया वहां का एक्सपीरियंस, वो कोई किस्सा ऐसा कुछ, अरे यार ये भी हो गया, ऐसा कुछ अनोखा किसानों की बात कोई वहां की,
1: ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब थोड़ा इंडिया जैसा ही था वो, कुछ
0: इंडिया जैसे ही था, कुछ ज्यादा डिफरेंस
1: ऐसा
0: नहीं
1: कुछ
0: था।
1: डिफरेंस नहीं
0: और
1: था।
0: लैंग्वेज को लेकर कोई इशू था
1: हाँ
0: कैसा, क्या कुछ ऐसा कोई
1: वहाँ
0: मोमेंट?
1: पे रशियन लैंग्वेज है ना, इंग्लिश भी बहुत कम आती है उनको, बहुत कम, तो बहुत इश्यू था लैंग्वेज का। तो
0: तो कोई भी चीज़ आपको बतानी होती थी, होटल मैनेजमेंट की बात हो या फिर खाने को कुछ हो, तो फिर आप कैसे आए रीच करते थे
1: मोबाइल
0: लोगों
1: से ट्रांसलेट करके।
0: को? अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया खुशी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे श्रोताओं को इतनी सही और सटीक जानकारी प्रदान करी, और सबसे लास्ट में फिर से आपको एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, और आपके जो सपने अभी आपने डिसाइड करें वो बिल्कुल ज़रूर पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
1: थैंक यू। श्रोताओ, अभी आपने सुनी अंडर 15 एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त खुशी राणा से राहुल की बातचीत। इस बातचीत की प्रस्तुति और संयोजन राजेश लामरोड द्वारा किया गया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं युवाणी और हम दो रेडियो बडीज जो हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं. आज है अंताक्षरी का माहौल और हम कर रहे हैं आपके कॉल्स का वेट. फिलहाल सुनते हैं राहुल की कुछ बातें.
1: जी बिल्कुल, युवाणी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच युवाओं का प्रोग्राम चल रहा है तो क्रिकेट की बात ना हो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है
0: बिल्कुल
1: साहब। और फिलहाल चल रहा है इंडिया का त्यौहार, इंडियन प्रीमियर लीग 2026, जो कि 28 मार्च को शुरू हुआ था और 31 मई को ख़त्म होने वाला है। लेकिन इस बीच क्या पॉइंट टेबल्स के हालचाल हैं बता देते हैं आपको। आपको पता ही होगा आरसीबी ने तो सबसे पहले क्वालिफाई कर ही लिया था, उसके बाद जीटी यानी गुजरात टाइटंस और एसआरएच भी जो है अब प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब जद्दोजहद है एक टीम का, अब वो एक टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ में प्रवेश करेगी। उसमें नाम शामिल है पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के साथ साथ केकेआर भी फिलहाल रेस में तो बनी हुई है। चांसेस तो बहुत कम है लेकिन फिलहाल देखते हैं कौन बाजी मारता है, कौन प्लेऑफ में शामिल होता है। और बात करें एमआई और एलएसजी की तो वो तो एलिमिनेट हो चुकी हैं। पॉइंट टेबल्स के हाल है और फिलहाल करंट अपडेट क्रिकेट को लेकर ये आ रही है कि भाई जून में होने वाली है अफगानिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज और ओडीआई मैचेस। तो इसमें इंडिया की जो टेस्ट टीम है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है अफगानिस्तान टूर के लिए। शुभमन गिल टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे और ओपनिंग साझेदारी में शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल आ सकते हैं, केएल राहुल वाइस कप्तान बनेंगे और साई सुदर्शन को फिर से मौका मिल रहा है। विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल का नाम शामिल है। देव पडिकल भी नाम देख रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी है, वाशिंगटन सुंदर है स्पिन के तौर पर। एक और स्पिनर कुलदीप यादव का भी नाम शामिल है। मोहम्मद सिराज पेस लेकर आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। मानव सुथार का नाम सामने आ रहा है, गुरनूर ब्रार भी शामिल है, हर्ष दुबे का नाम दिख रहा है। और बात करें ओडीआई टीम की तो सब लोगों को इंतज़ार रहता है ना कि यार ये रोको का मुकाबला हमें कब देखने को मिलेगा, तो जून में मिलेगा आपको अफगानिस्तान टूर पर। ओडीआई टीम में शुभमन गिल के साथ रोहित मैन शर्मा जी आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और एज यूजुअल ओडीआई टीम में फर्स्ट डाउन विराट कोहली का नाम तो भैया रन मशीन कोहली है, इसके साथ दिखेंगे आपको। और मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, ये दो नाम विकेट कीपर के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। हार्दिक पांड्या का नाम शामिल है, नीतीश कुमार रेड्डी है, वाशिंगटन सुंदर स्पिनर कुलदीप यादव दोनों सेम नाम वापस आपको दिखेंगे। और पीस की बात करें तो अर्शदीप सिंह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा है, प्रिंस यादव का नाम सामने आया है और इन्होंने वाकई इस आईपीएल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली मतलब परफॉर्म किया है और बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। गुरनूर ब्रार का नाम शामिल है और लास्ट नाम हर्ष दुबे का सामने आता है। तो ये थी स्क्वाड इंडिया की टेस्ट और ओडीआई की। फिलहाल युवाणी प्रोग्राम बढ़ते हैं आगे, मजेदार से गाने एंजॉय करेंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, आईटीआर भरने से पहले तैयार रखनी चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट जो कि जरूरी है, जानते हैं इन्हें?
1: जी बिल्कुल, प्रोग्राम इवेंट को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप, और फिलहाल जानकारी बता देते हैं आपको भी, आईटीआर जो पहली बार भर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर ये जानकारी है क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे। उन्हें आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सभी आईटीआर फॉर्म जो हैं वो जारी कर दिए हैं। टैक्स फाइलिंग भरने से पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवेश जहां आपने किया है उसका एक प्रूफ होना चाहिए, कैपिटल गेन स्टेटमेंट AIS फॉर्म 26AS और फॉर्म नंबर 16, रेंट रसीद और HRA रिकॉर्ड्स आप अपने पास रखिए। जितनी भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए, जितने भी आपको IDs बताई गई है, जितने भी आपको फॉर्म बताए गए हैं, वो आपको अपने पास रखने होंगे सुरक्षित तरीके से, तभी आप ITR अपना इजीली फिलअप कर पाएंगे। व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए ITR जो भरने की लास्ट यानी अंतिम तारीख है वो रखी गई है 31 जुलाई 2026, यानी 31 जुलाई 2026 तक आप अपने जो है वो ITR फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार भरने जा रहे हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने बताए, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, AIS फॉर्म है, 26AS है, फॉर्म नंबर 16 है, ऐसी कुछ चीज़ें आपको रखना आपके पास अनिवार्य होगा।

0: दोस्तों, टाइम हो गया है हमें जो है आपसे विदा लेने का, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ही प्यारी सी शाम में हम आपसे मिलेंगे और ऐसी ही प्लेलिस्ट लेके आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हुए थे, मैं विनीता और मेरे साथ
1: इस आवाज़ का नाम राहुल। और आज के प्रोग्राम विवाने में बहुत कुछ खास, एक ख़ास बातचीत का जिक्र हुआ। एशियन चैम्पियनशिप 2026 में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया खुशी राणा से कुछ खास बातें, उनकी एक्सपीरियंसेस हमने जाने। आज के प्रोग्राम प्रोग्राम युवाणी यहीं तक का था। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। आज के प्रोग्राम का संयोजन और प्रस्तुति रही राजेश लामरोड, कंसोल पे हमारे साथ स्नेह। नमस्कार।

0: श्रोता, हम अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार आकाशवाणी।
2: भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिप्पे थिरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश

0: में है। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहाँ से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सांसरी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:05 हो चुके हैं। अब समय हो चला है गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम का।

नमस्कार, हेलो, और एक बहुत ही शानदार, जानदार और म्यूजिकल शाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट राधिका व्यास, और आप मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ना सब कुछ सही चल रहा होता है, पर दिल कहता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मस्ती या थोड़ी सा एनर्जेटिक कुछ होना चाहिए ना। तो आज ना

मूड बिल्कुल क्लियर है, ना कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ, ना कोई इधर उधर की फिजूल बातें, क्योंकि आज मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्योर म्यूजिक से होने वाला है। आज का रूल एकदम सिंपल है, बातें कम और गाने सबसे ज़्यादा। बैक टू बैक बेहतरीन ट्रैक्स चलेंगे और मूड को एकदम हाई रखेंगे। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, वॉल्यूम को थोड़ा ऊपर कीजिए, क्योंकि इस नॉनस्टॉप म्यूजिकल सफ़र की शुरुआत हम कर रहे हैं उस आइकॉनिक और सुपरहिट ट्रैक के साथ, जो बजते ही पांव अपने आप थिरकने लगते हैं।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचरन जीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तेरा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाँ, शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो, जो भी दे जगाती है कयामत कोई।

और दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आज बातें कम और गाने ज्यादा होंगे, तो वादा मुताबिक हमने नॉन स्टॉप म्यूजिक का पूरा मजा लिया, पर अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मुझे आप सभी से इजाजत लेनी होगी। वक्त का पता ही नहीं चला, क्योंकि जब साथ में इतने हसीन गाने हो तो सफर एकदम छोटा लगने लगता है। उम्मीद है आज की इस म्यूजिकल शाम में आपके मूड को एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक बना दिया होगा। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट राधिका व्यास, अब आपसे लेने जा रही हूं इजाजत। लेकिन आप जहां भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और म्यूजिक को अपनी जिंदगी में गुनगुनाते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द एक और ऐसी शानदार और धांसू सी प्लेलिस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और शब खैर।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। शाम के 7 बज चुके हैं। कार्यक्रम जयमाला सुनेंगे अभी आप विविध भारती मुंबई से कुछ ही क्षणों के अंदर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम जयमाला में। मैं हूं आज आपकी साथी अनुराधा। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी दस, समीर ने इसे लिखा था। लीजिए अब सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में अगला गीत, भारतीय सेना।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

फिल्म ज्वेल थीफ से लीजिए गीत सुनिए, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एसटी बर्मन का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम जयमाला विविध भारती से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम जयमाला।

ये तो होना ही था खेल खेल में. ये था फिल्म का नाम. किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे. दूसरा आदमी, यह है फिल्म का नाम. लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त जय माला।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यह है विविध भारती, लीजिए सुनिए कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस।

0: पकड़ की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम पॉप एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: अरे अब तक घंटी नहीं बजी, 10 बज चुके हैं, अब तक तो घंटी बज जानी चाहिए। क्या बात है, कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है आज?
1: अरे नहीं यार, सवाल ही नहीं उठता, मैंने खुद प्रिंसिपल को ऑफिस में जाते देखा है।
0: फिर क्या बात है, आओ ऑफिस में चलकर शर्मा से पूछे।
1: हाँ हाँ चलो।
0: शर्मा जी क्या बात है, 10 बज चुके हैं, कॉलेज की घंटी नहीं बजेगी आज?
2: क्या बताऊं, कहां मर गए आज सबके सब चपरासी। आप सब लोग अपनी अपनी क्लास में चलिए, मैं जल्दी से घंटी बजवाता हूँ।
1: अच्छा ठीक है।
2: सर रामरथ अभी तक नहीं आया, वक्त हो गया है, घंटी कौन बजाएगा?
3: हाँ शर्मा जी, वक्त हो गया है, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी, मगर रामरथ अब तक क्यों नहीं आया? खैर वासुदेव को कहिए कि घंटी बजा दे।
2: वासुदेव ने तो 2 दिन की छुट्टी ली है सर।
3: तो फिर साइंस लेबोरेटरी के फरीद को बुलाकर जल्दी से घंटी बजवाइए।
2: सर मालूम हुआ है कि फरीद भी आज नहीं आया।
3: ओफो, क्या कॉलेज के सभी चपरासियों ने हड़ताल की है? राम रख नहीं, वासुदेव नहीं, फरीद नहीं, तो कोई और होगा, किसी से भी बजवा लीजिए घंटी।
2: सर मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ, मेरी सुनता ही कौन है? हरनाम सिंह से कहा था कि भैया जरा घंटी बजा देना, तो कहने लगा कि मेरा काम सिर्फ ऑर्डर घुमाना है, घंटी बजाना नहीं। और आप ही बताइए प्रिंसिपल साहब, मैं क्या करूं?
3: यही तो कमी है शर्मा जी आप में, रामरख है नहीं, दूसरा कोई चपरासी घंटी बजाता नहीं, ऐसी हालत में आपके सामने दूसरा कोई हल नहीं है।
2: सर आप भी मुझ पर ही खफा होने लगे, मुझे रास्ता तो बताइए कि मैं क्या करूं?
3: अरे भले आदमी, इसमें करना ही क्या है, 10 कब के बज चुके हैं, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी, जाइए आप ही जल्दी से घंटी बजा दीजिए।
2: क्या क्या मैं बजाऊं घंटी?
3: क्यों क्या हो गया, अगर आज घंटी आप ही बजा देंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा?
2: सर आज तक मैंने अपनी साइकिल की घंटी के सिवाय दूसरी कोई घंटी नहीं बजाई।
3: आप भी हद करते हैं शर्मा जी, अच्छा जाइए काम करिए अपना, मैं बजा देता हूँ घंटी।
2: नहीं नहीं नहीं सर, आप बैठिए मैं बजाता हूँ घंटी, मेरे होते हुए भला आप तकलीफ करेंगे?
3: तो फिर जाइए और जल्दी से घंटी बजा डालिए।
2: जाता हूँ सर जाता हूँ, बस एक ख्याल आता है सर, वरना अब तक तो मैंने कब की घंटी बजा दी होती।
3: कह डालिए कौन सा ख्याल है वो?
2: आप तो जानते ही हैं सर कि मेरा साला इसी कॉलेज में पढ़ता है,
3: तो
2: अगर घंटी बजाते हुए कहीं उसने मुझे देख लिया और घर जाकर अपनी बहन को कह दिया
3: तो क्या होगा?
2: तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा सर।
3: वो कौन सी मुश्किल है जिसमें आप फंस जाएंगे?
2: अब क्या अर्ज करूं सर, घर जवाई क्या बन गया हूं, मैंने तो गुलामी ही लिख कर दे दी है।
3: तो अब आप दफा हो जाइए, मैं खुद ही घंटी बजा लूंगा।
2: नहीं

0: आप बैठिए सर, मैं जाता हूँ, बजाता हूँ घंटी।
1: मैं अंदर आ सकती हूँ सर?
2: हाँ हाँ, आओ आओ। क्या बात?
1: सर, मैं यशपाल से तंग आ गई हूँ, जरा उसे समझाइए। अगर मेरे पिताजी को उसकी हरकतों का पता लग गया तो बहुत बुरा होगा, उनका गुस्सा बहुत खराब है।
2: क्या हुआ आखिर, कुछ कहो तो।
1: सर, वो प्रेम दीवाना है, उसने दुनिया भर में डंका पीट दिया है कि मैं उसे प्रेम करती हूँ, जबकि मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है।
2: मगर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने और कहने की?
1: हिम्मत का क्या है सर, आजकल कोई भी लड़की किसी लड़के से जरा हंसकर बोल ले तो बस वो समझता है कि लड़की उसके प्रेम में पागल है। सचमुच ये लड़के बड़े दीवाने होते हैं।
2: तो मतलब ये हुआ कि तुम भी यशपाल से हंसकर बोल चुकी हो, हाँ?
1: इसमें बुराई ही क्या थी सर, एक दिन पार्क में मैं अपनी बहन और जीजा जी के साथ बैठी थी, यशपाल भी उधर आ निकला। मैंने सहपाठी समझकर अपनी बहन और जीजा जी से उसका परिचय करवाया। उस दिन के बाद उसने एक दो बार मुझसे किताबें मांगी, मैंने दे भी दी। बस इसी से उसको गलतफहमी हो गई कि मैं उसे प्रेम करती हूँ। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है?
2: पर आज क्या बात हुई, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो?
1: आज तो बात बहुत बिगड़ गई है सर। मैं कॉलेज के फाटक में घुसी ही थी कि किसी लड़के ने मुझे कुछ कहा। इस पर यशपाल उस पर बिगड़ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मेरे बारे में इस तरह की लड़ाई झगड़े हों ये अच्छा नहीं है सर, इसमें मेरी बदनामी होती है।
2: कहाँ है वो लोग?
1: वो लोग फाटक के पास झगड़ रहे हैं।
2: अच्छा, तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अभी देखता हूँ। क्या तुम ऐसा लगा रखा है? जाओ अपनी अपनी क्लासों में। यशपाल, तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ। सुनिए शर्मा जी, ड्राइवर से कहिए कि सुरेंद्र को जल्दी से मेरी कार में अस्पताल ले जाए।
0: जी बहुत अच्छा सर। अरे कहाँ? अरे वासुदेव, ओहो वासुदेव की छुट्टी पर गया है।
2: तो क्या बात थी यशपाल?
3: बात कुछ खास नहीं थी सर, सुरेंद्र मेरे व्यक्तिगत मामले में दखल दे रहा था, मैंने उसे मना किया तो वो गर्म हो गया, बात बढ़ गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई।
2: हाथापाई भी ऐसी कि तुमने सुरेंद्र का सिर ही फोड़ दिया? ऐसा क्या व्यक्तिगत मामला था तुम्हारा कि उसे दखल देने की जरूरत पड़ी और तुम्हें उसका सिर फोड़ने की जरूरत आ पड़ी?
3: कैसे बताऊं सर, शर्म आती है।
2: बहुत खूब, शर्म आती है और वो भी तुम्हें। अपने सहपाठी का सिर फोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और अब वजह बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। वक्त खराब मत करो मेरा, बोलो क्या बात थी, जल्दी बोलो।
3: सर, वो मेरे प्राइवेट मामले में दखल दे रहा था, ये मुझे सहन नहीं हुआ।
2: आखिर क्या प्राइवेट मामला है तुम्हारा, जवाब दो।
3: सर, सुरेंद्र मेरे और सुजाता के बीच नाजायज दखलंदाजी कर रहा था।
2: क्या संबंध है तुम्हारा और सुजाता का?
3: सर, हम दोनों एक दूसरे को।
2: हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम दोनों एक दूसरे को?
3: सर, बात ये कि सुजाता मुझको और मैं सुजाता को।
2: रुक क्यों गए, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम सुजाता को और सुजाता तुमको, क्या?
3: असल बात ये है सर कि हम दोनों एक दूसरे को
2: प्रेम करते हैं।
3: यस सर।
2: प्यार करते हैं।
3: जी हाँ।
2: मोहब्बत करते हैं, यही ना?
3: जी हाँ सर, जी हाँ।
2: गधे हो तुम अव्वल दर्जे के।
3: जी,
2: तुमने अपनी सारी शर्म और हया घोल कर पी डाली है। सुजाता तुमसे प्रेम प्रेम कुछ नहीं करती।
3: मगर सर वो,
2: तुम ही एक नंबर के बेवकूफ हो जिसे न अपनी इज्जत का ख्याल है न दूसरी लड़की की इज्जत का।
3: मैंने क्या किया है सर, सब जानते हैं कि मैं और सुजाता काफी नजदीक हैं।
2: लगता है कि शर्म और अकल से तुम्हारी खानदानी दुश्मनी है। कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ तुमने ही डंका पीट रखा है। अगर सुजाता ने अपनी बहन और जीजा जी से तुम्हारा परिचय करवा दिया, तुम्हें अपनी किताबें दे दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। अगर तुम्हारी ये बेहुदा बात मान भी ली जाए कि तुम सुजाता से प्रेम करते हो, तो इसमें सुरेंद्र का सिर फोड़ने की नौबत कहाँ से आई?
3: सर, मैं सुजाता से कुछ कहना चाहता था, तभी सुरेंद्र ने उसे छेड़ दिया, मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, बस बात बढ़ गई।
2: तुम जैसे आवारा और जाहिल लड़के ही कॉलेज के नाम को बदनाम करते हैं। किसी लड़की की बदनामी का दर्द तुम्हें तब मालूम हो यशपाल, जब तुम्हें अपने बहन की बदनामी का दर्द उठाना पड़े।
3: सर, मैंने किसी को बदनाम नहीं किया।
2: बको मत, चोरी और सीना चोरी, शर्म तो आती नहीं और ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। अगर सुजाता के पिताजी को मालूम हो गया तो क्या होगा? सुरेंद्र का सिर फूट गया है, उसके घर वाले यहाँ कॉलेज में आएंगे, उन्हें क्या जवाब दोगे तुम और क्या जवाब दूंगा मैं? क्या करूं अब मैं तुम्हारा, पुलिस के हवाले कर दूं या कॉलेज से निकाल

0: नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं खताबार हूँ, कसूरवार हूँ। इस बार तो मैं दोस्तों के सिखाने से भूल कर बैठा।
1: कौन है ये दोस्त?
0: मेरी ही क्लास के लड़के हैं सर।
1: क्या सिखाया था उन्होंने?
0: यही कि सुजाता बड़ी घमंडी लड़की है, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अगर यशपाल उसे काबू में लाकर दिखाएं तो हम भी माने कि उसमें कुछ है।
1: और तुम उनकी फूंक में आकर कूद पड़े मैदान इश्क में। ये बताओ कि तुम्हारे कोई बहन है?
0: हाँ सर, दो बहनें हैं।
1: फर्ज करो इसी तरह कोई तुम्हारी बहनों को बदनाम करने की कोशिश करे तो क्या करोगे तुम? चुप क्यों हो, जवाब दो।
0: सर ऐसी बात तो कोई भी नहीं सहन कर सकता।
1: तो जो बेजा हरकत तुम सहन नहीं कर सकते उसके लिए दूसरों से कैसे उम्मीद रखते हो कि वो सहन ही कर लेंगे? क्या तुमने ये समझ लिया है कि सुजाता के कोई है ही नहीं?
0: सर सचमुच में मैं दोस्तों के कहने में आकर नादानी कर बैठा, मगर इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ।
1: बस बस ठीक है, मेरे पाँव पड़ने और क्षमा मांगने से क्या होगा? तुम्हारी हरकत से सुजाता को मानसिक कष्ट पहुंचा है और सुरेंद्र को शारीरिक पीड़ा, वे तुम्हें कैसे क्षमा कर देंगे?
0: मैं उन लोगों से भी माफी मांग लूंगा सर, पहले आप तो क्षमा कर दीजिए।
2: मैं अंदर आऊं सर?
1: आइए।
2: सर रामरख आ गया है।
1: रामरख आ गया है? कहाँ है?
2: बाहर बैठा है, लगता है कुछ नशा करके आया है।
1: अच्छा, अंदर भेजिए उसे।
2: जी बहुत अच्छा सर।
3: जयराम जी की साहेब।
1: जयराम जी की। अब तक कहाँ थे तुम?
3: अस्पताल गए थे साहेब।
1: अस्पताल जाना था तो छुट्टी क्यों नहीं ली, खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारी लापरवाही से कितनी परेशानी हुई है हम लोगों को। क्या बीमारी है तुम्हें, क्यों गए थे अस्पताल?
3: बीमारी तो हमें कुछ भी नहीं है साहेब।
1: बीमारी नहीं है तो फिर अस्पताल क्यों गए थे?
3: कुछ काम से गए रहे साहेब।
1: बीमारी का इलाज कराने के सिवाय अस्पताल में क्या काम हो सकता है?
3: होता है साहेब, आजकल अस्पताल में भी काम होता है।
1: क्या होता है, कुछ बोलोगे भी?
3: साहेब हम खून देने को गए थे।
1: खून? कैसा खून?
3: अपना खून साहेब। कल यहाँ एक दुर्घटना हुई, अपने कॉलेज का एक लड़का मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था साहेब। दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
1: अच्छा।
3: कल रात मैंने रेडियो पर एक ऐलान सुना था कि उसी छात्र को खून दिया जाना है, लेकिन ओआर रकम का खून मिल नहीं रहा है और इसीलिए लोगों से दरखास्त की गई थी। प्रिंसिपल साहेब, पिछले महीने जब कॉलेज में मेरे खून की जांच हुई थी ना, तो मुझे याद था कि मेरा खून उसी रकम का है, इसीलिए आज सुबह मैं अपना खून देने अस्पताल चला गया, इसी कारण मुझे देर हो गई। हम चपरासी जरूर हैं साहेब, लेकिन हमें भी तो अपने छात्रों के लिए कुछ करना है ना साहेब।
1: शाबाश रामरख, शाबाश। सचमुच तुमने बहुत नेक और बहादुरी का काम किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे कॉलेज का एक चपरासी अपने कर्तव्य में इतना आगे निकल गया कि उसने पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ रामरख। तुम्हारे आने से पहले जितना दुखी था उससे कई गुना अधिक खुश हुआ हूँ। ये लो दूध पीना और तुम घर जाकर आराम करो।
3: नहीं सर, नहीं, रुपए हम नहीं लेंगे।
1: क्यों?
3: अभी जो मन में खुशी है, रुपए लेने के बाद तो हमारा मन दुखी हो जाएगा साहेब।
1: रामरख, ये रुपए मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ, शरीर में कुछ कमजोरी आ गई होगी, दूध पियोगे तो कुछ चुस्ती आ जाएगी भैया।
3: नहीं साहब, हमका कमजोरी नहीं आई है, हमें तो और ताकत आ गई है, हम भी दूसरों के कुछ काम आ सकते हैं, इसी खुशी के आगे कमजोरी मालूम ही नहीं पड़ती साहब।
1: फिर भी रामरख बात मानो और ये रुपए रख लो भैया।
3: हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, रुपए हमको नहीं चाहिए, ये रुपए ले लीजिए साहब।
1: अच्छा तो घर जाकर आराम ही करो, हम खुद घंटी बजा लेंगे।
3: पर साहब घंटी बजाने का काम तो हमारा है ना।
1: अब ज्यादा बात मत करो, जाओ और आराम करो।
3: अच्छा साहब जाता हूँ, मैं तो डर ही गया था कि देर हो गई है, आज साहब नाराज होंगे।
1: अरे नहीं नहीं, नाराज गलत कामों पर हुआ जाता है, अच्छे कामों पर नहीं। अच्छा अब तुम जाओ।
3: अच्छा साहब, नमस्ते।
1: नमस्ते। यशपाल
0: जी,
1: तुम सुन रहे थे ये सब कुछ?
0: हाँ सर।
1: देख लो, वो एक अनपढ़ चपरासी है और तुम पढ़े लिखे विद्यार्थी।
0: समझ रहा हूँ सर, वो अनपढ़ इंसान भी मुझे मात दे गया है, मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी अस्पताल में जाकर उतना खून तो दे सकूं जितना सुरेंद्र के सिर से चला गया है।
1: तो तुम समझ चुके हो कि आदमी का खून भी देश की अमानत है।
0: हाँ सर।
1: आपसी झगड़ों के लिए इसे जमीन पर नहीं बहाना है यशपाल, ये रामरख भी एक प्रेम दीवाना है, अगर तुम्हें प्रेम दीवाना ही बनना है तो रामरख की तरह बनो।
0: यस सर।

प्रेम दीवाना। हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ब्रजभूषण की लिखी ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे पुरुषोत्तम दारवेहकर।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे श्रीकांत फिल्म से। और अब ऊंचाई फिल्म से ये गीत अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में, अमित त्रिवेदी का संगीत है, इरशाद कामिल ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

ओके जानू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शाशा तिरुपति, आशिमा महाजन और साथियों की आवाजें, ए आर रहमान का संगीत था।

तुम्हारी सुलू इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा

0: व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: The current situation.
4: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है।

0: इसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। प्रोग्राम आपके लिए लीजिए हाजिर है।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज थी। लीजिए आपके लिए मैं अगली पेशकश। फिल्म वक्त से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, रवि की धुन है और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और

0: अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे इशारा फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

जंगली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुँचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ न कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही। बर्बाद

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था। उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था

फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया के चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं।

ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनके मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ख्वाबों को मुट्ठी में बटोरे वो बेख्याली में जिंदगी की राहों पर सरपट भागती जा रही थी कि अचानक राह पर पड़े पत्थर से टकरा गई। मुट्ठी में बंद ख्वाबों के जुगनू इधर उधर बिखर गए। उसका एक भला सा नाम था, लेकिन उसकी पहचान नाम से नहीं बल्कि उसके हुनर से थी।

उसके ख्वाबों के मोती राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए तो उसका दिल भी टूट गया। उसे दिल के टूटने की आहट हो गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की रेशमी दुशाला पहन रात के सन्नाटे में चांद से बतियाती अपना सफर पूरा करने लगी।

ख्वाबों की रेशमी दुशाला ओढ़े वो खेतों मेड़ों से जा रही थी, तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम ठिठक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का राग।

0: उस खुशबू की ओर वो बढ़ती चली गई। फिर सुबह की उगी नरम धूप सी किसी का मुस्कुराता चेहरा था। वो कोई शख्स था या था सपनों का शहजादा। बस वो उस तिलिस्मी शख्स को भर आंखों देखती रही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं।

जैसे मुँह।

0: खुद पे इतराते न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

वो दौड़ती फुदकती तितली भौरों के पीछे भागती, कोयल सरीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती, ख्वाबों का सुंदर पिटारा लिए चली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से लगी हुई फुलवारी पर उसकी आंखें ठिठक गईं। सुर्ख रंग की पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद ये वही शहजादा था, ख्वाबों वाला शहजादा।

उस शहजादे ने पलकों की पंखड़ी पर फूलों का झुरमुट धर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज थमा दिया। उस बीज से प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास में प्रेम का पौधा जगमग होने लगा। तब से अब तक वो गा रही है प्रेम गीत, फूलों की माला में पिरोती है प्यार के मन के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर रात्रि के 11 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनने वाले हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कुछ क्षण प्रतीक्षा करिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।

0: भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital.